डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? भाई भाई, मैं वापस आ गई हूँ। भाइयों बहनों दोस्तों, भाइयों बहनों तो नहीं, अभी दोस्तों ही बोलते हैं यार। मतलब आई थिंक वी आर दैट क्लोज कि भाइयों बहनों नहीं बोलना चाहिए। अभी अभी वी आर ऑन, हम अपने फ्रेंडशिप के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए आप सब हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे से दोस्त बन चुके हैं। हाउ आर यू गाइज एंजॉइंग योर थर्सडे इवनिंग? भाई आई तो हैड अ रियली ग्रेट टाइम, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सा काम किया एंड आफ्टर दैट इट वॉज काइंड ऑफ लाइक माई डे ऑफ, एक्चुअली हाफ डे ऑफ। पूरा डे ऑफ तो भाई मैंने पता नहीं कब लास्ट लिया था, मुझे याद भी नहीं है, बट इट्स लाइक अ हाफ डे ऑफ। और पता है मैंने क्या किया अपना हाफ डे ऑफ में? आई वेंट एंड मेट सम फ्रेंड्स एंड आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। ओ एम जी, आई एम सच एन एक्सट्रोवर्ट। जब मुझे लोग मिल जाते हैं ना, जिनके सामने मैं सामने यू नो आस पास आस यू नो आगे पीछे बैठ के बातें करती हूँ, आई फील सो एनर्जाइज। आई फील लाइक मेरे पूरे महीने की मेरी इंटरेक्शन कंप्लीट हो गई, देन आई कैन सर्वाइव आफ्टर दैट। लेकिन मतलब कोई सामने बैठ के बातें होना चाहिए, मतलब यू नो आसपास आगे पीछे बैठ के बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे, थोड़ी गॉसिप करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ डिफरेंट वाइब। यू नो इफ यू आर इंट्रोवर्ट देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट लाइक मी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एनीवेज गाइस, तो आज मुझे अपने दोस्तों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। ऑन अ थर्सडे आफ्टरनून वी मेट एट दिस रियली नाइस, एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट का नाम भूल गई, मैंने ना गूगल मैप्स पे डाला और मुझे वो लेके चला गया वहीं पे रेस्टोरेंट में, बट इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। इट वाज लाइक अ सी फूड रेस्टोरेंट एंड देन वी हैड सम कॉकटेल्स एंड वी हैड टॉक्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे हमने बात बात करी। तो बात करते करते बहुत सारी हमने स्टोरीज शेयर करी और बहुत सारी थॉट्स भी शेयर करी, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं ना, बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी सारे म्यूजिशियन सर्कल में ही मोस्टली रहते हैं, यू नो। सो बिसाइड्स टॉकिंग अबाउट हाउ टू टर्न आवर क्रिएटिव पैशन इनटू अ प्रॉपर बिजनेस एंड वगैरह वगैरह एंड डेटिंग लाइफ अगैर वगैरह वगैरह के बारे में, हम लोग टैक्सेस के बारे में भी बात करते हैं। यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो एनीवेज, जब टैक्सेस की बात आएगी वो बाद में बात करेंगे। आप ये वाला गाना सुनिए, मैं आज टैक्सेस के बारे में नहीं बात करूंगी, आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करूंगी, विच आई वॉज एक्चुअली डिस्कसिंग विथ माई फ्रेंड्स टुडे एंड आई थॉट अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक ओ एम जी यार, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था इसके पहले। तो वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर द सॉन्ग। आप ये एंजॉय करिए, दिस इज बाय ऋत्विज, इट्स कॉल्ड लिग्गी।

एनीवेज गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम टोटली डूइंग फाइन भाई. आई मेट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, एंड इट वॉज सच अ ग्रेट हैंग. मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने दोस्तों से मिलके ना, चिट चैट करने में और बातें, टू कैच अप एंड एवरी थिंग. इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, सो वी वर लाइक नहीं, लेट्स मीट, वी हैवन मेट इन लाइक सो लॉन्ग. भाई आप पिछली बार अपने दोस्तों से कब मिले? अगर आपको कोई नहीं मिले हैं रिसेंटली तो जरूर जाइए, मिलिए यार. मैंने तो आपको पहले ही ट्यूसडे और वेंसडे, जो कि कल और परसों था, मैंने आपको इतनी सारी हैपनिंग इवेंट्स के बारे में बताया था, विच वॉज हैपनिंग ऑल अक्रॉस DFW. सो यू मस्ट गो चेक आउट सम ऑफ दीज इवेंट्स. अगर आपने नहीं लिस्ट करी है वो इवेंट्स के बारे में, तो भाई आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना स्टार्ट लाइक एन इंस्टाग्राम पेज और लाइक अ स्मॉल लिटल वेबसाइट वेर आई कीप लिस्टिंग ऑल दीज लाइक हिप एंड हैपनिंग इवेंट्स दैट आई रिसर्च एंड आई फाइंड आउट, विच आई थिंक सम ऑफ देम आर फैमिली फ्रेंडली एंड सम ऑफ देम आर जस्ट यू नो फॉर यंग फोक एंड एवरी थिंग. तो अगर आप नहीं गए हैं एनी ऑफ दीज इवेंट्स और अगर आपको जाना है, और इफ आई टॉक टू फास्ट और आपको समझ नहीं आया कि भाई इसने बोला कि इतनी सारी इवेंट्स की लिस्ट करी, वी डोंट नो विच वन टू डू, देन यू कैन गो चेक इट आउट. बट मैंने वो शुरू नहीं किया. बट इफ यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, then why don't you give me a call at 972-235-5555 and then let me know, then I can start like a listings page, and that would be really cool because it'll be like Fun Asia listings for fun events in DFW. Hanji guys, and you are all listening to AP the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM, and this is an evening in Dallas. Diggity diggity bye. एक गाना सुनते हैं, देन वी विल कम बैक एंड वी विल टॉक सम मोर.

0: Guys, I had the most amazing call with one of my listeners here right now, Gauravi. And Gauravi was talking to me about the same thing ki bhai hum jab India mein, I feel like this is, I mean, I don't know if it's just an Indian mentality, but it's predominantly an Indian mentality ki hame jab hum jab chote hote hain hame sikhaya jata hai be humble, don't be arrogant. Agar aapko koi compliment de raha hai, matlab, you know, don't be like pride, don't have pride about it. Don't be like अरे थे मतलब जो भी इस तरह से. You should always learn to be humble because somehow that portrays us to be a simpler being and a simpler person. However, Gauravi was sharing her experience with me, which is when she was younger, she used to do the same thing because all her life, you know, people have told her to be humble and to be, you know, like शांत and you know, kind and all of that. तो कोई compliment भी आता था तो वो she the way she would take the compliments is like, हाँ ठीक है, thank you so much, I tried, whatever, you know. You would brush it off and put it aside instead of saying, thank you, I know I worked really hard for it. However, around 40 years back, when she was just a student, one of her teachers came to her and told her that and put that thought in her head कि भाई तुम्हें कोई अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो तुम कॉम्प्लीमेंट को लेना भी सीखो यार. मतलब डोंट जस्ट ब्रश इट ऑफ. व्हेन समबडी इज गिविंग यू ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, यू शुड बी लाइक, ओ थैंक यू, आई नो आई वर्क वेरी हार्ड. मैं भी ऐसे ही करती थी पहले शुरू में. व्हेन आई स्टार्ट परफॉर्मिंग, एवरी टाइम समवन कम एंड गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, आई वुड बी लाइक, ओ यार आई वॉज जस्ट डूइंग माई थिंग, यू नो, इट्स सो इजी फॉर मी. मतलब इट्स सो इजी तो नहीं बोला, सॉरी, लेट मी फ्रेज दैट, रीफ्रेज दैट. आई वुड से लाइक, ओ थैंक्स, या आई ट्राइड माई बेस्ट, बट मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई. जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है हम लोग ये वाली चीज पॉइंट आउट करते हैं, ओ बट यू नो ये गलती हो गई, वो गलती हो गई. बट यू नो इट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट we all actually say that, hey, thank you so much for sharing that with me. I worked very hard for it. Yes, I mean, I tried my best. And the accepting that compliment is a big deal, okay? So anyways, guys, we're about to go into a break. Break mein jaane se pehle, ek choti si announcement. Shri Krishna Jewelers. At Shri Krishna Jewelers, jewelry is more than an accessory. It's a reflection of tradition, elegance and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds and from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. Now welcoming you at their new location in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished moments since 1967.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
2: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया.
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया.
7: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-5700. 9772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today. Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Swag se karenge sabka swagat.
4: Bye. हम लोग बात कर रहे थे ऑन हाउ टू रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स. गाइज, आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है, किसी ने आपको तारीफ करी है बहुत सारी की, भाई तुम तो, अरे वाओ, यू आर सो स्ट्रांग एंड यू आर सो हिप एंड यू आर सो, आई डोंट नो, गुड लुकिंग एंड वगैरह वगैरह. या फिर अगर आपको किसी ने वैसे ही अपने स्किल के ऊपर तारीफ करी है कि भाई वाओ दैट प्रोजेक्ट वाज सो अमेजिंग, एंड देन डिड यू लाइक एवर ब्रश इट ऑफ, वी लाइक नहीं यार, बस मैंने तो बस ओवरनाइट मैंने मतलब थोड़ा प्रेप किया एंड दैट्स इट, आई डोंट इवन पुट एनी एफर्ट. भाई एफर्ट जब करी है, हमें सबको पता है, एवे में थोड़ी ना कुछ हो जाता है, सब ने अपनी मेहनत करी होती है, एवरीबडी हैज पेड देयर ड्यूज, तो हम उससे शर्माते क्यों हैं उसको एक्सेप्ट करने में. अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट डज नॉट मेक यू और मी और द योर नेबर स्मॉल, इट जस्ट शोज दैट यू आर अवेयर ऑफ हाउ मच वर्क यू हैव पुट इन. एनीवेज गाइज, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू ध्रुव, हु रिक्वेस्टेड फॉर सैफायर, विच इज एक्चुअली एन एड शीरन ट्यून, बट इट इज फीचरिंग अरिजीत सिंह. अपेरेंटली इट्स रियली पॉपुलर.

विल दे बी एबल टू कोलैब, यू नो, और इस तरह से कोलैब डाल, ये नहीं सोचते कि इन दोनों की म्यूजिकल सेंसिबिलिटीज मैच करती हैं कि नहीं. एक सिंपल म्यूजिशियन को अगर इट्स लाइक अगर आप बटर चिकन को लेके चौमिन में मिला दोगे तो कैसा टेस्ट करेगा? इट विल बी रॉन्ग, राइट? नूडल्स में बटर चिकन, आई डोंट नो, मे बी इट कैन टेस्ट ओके. अगर वैसे हम इंडियंस उसमें तड़का वड़का मसाला वसाला डालेंगे तो जाके बड़ा सही बनेगा, लेकिन आपने खाली बटर चिकन और ऐसी नूडल्स डाल दी ना, सिरके वाली नूडल्स, तो इट्स जस्ट गोइंग टू टेस्ट रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ वेज, इन माई ओपिनियन. बट एनी वेज, माई रेस्टोरेंट ओनर्स हु आर लिसनिंग टू दिस, मे बी दिस इज समथिंग दैट यू गाइज शुड एक्सपेरिमेंट विथ. एनी वेज, सो अनूव जैन बेसिकली कोलैबोरेटेड विद जेकब कॉलियर ऑन दिस लाइक मैसिव स्टेज. एंड इट वॉज सच ए ब्लंडर बिकॉज वन, उनको अपना सुर नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली. जेकब कॉलियर वॉज प्लेइंग दिस ट्यून एंड अनूव जैन वॉज रियली ट्राइंग टू कैच अप विद हिम एंड इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग यू गाइज. इट वॉज सच अ बिग डील एंड अ लॉट ऑफ द इंडियन म्यूजिशंस एंड द म्यूजिक कम्युनिटी दे वर लाइक, हमारे इंडिया का नाम खराब कर दिया, ऐसे म्यूजिशियन को क्यों पॉपुलर बनाते हैं लोग, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह. इट वॉज लाइक अ बिग क्रिटिसिज्म. तो एनी वेज, वो जूसी जो गॉसिप है, यू कैन ऑल गूगल इट. आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैट एनी मोर, बट आई एम गोइंग टू प्ले यू अ सॉन्ग बाय अनूव जैन बिकॉज आई थिंक वी शुड ऑल नो अबाउट हिम, राइट?

भाई आपको वो गाना कैसा लगा? आई थिंक इट वॉज प्रिटी क्यूट. आई थिंक इट वॉज अ वेरी स्वीट लिटिल सॉन्ग. इट्स लाइक अ डाउन डाउन टाइम वाइब्स, यू नो, लाइक रात को सोने के पहले वो गाना सुनो, देन एन्जॉय इट, है ना? गाइज, आई नो यू गाइज आर टोटली वेटिंग फॉर दैट टाइम ऑफ द शो कि भाई फ्री गिव अवे कब होगा. भैया चंडीगढ़ बाइट्स का फ्री गिव अवे आने वाला है मेरे रेगुलर टाइम पे 8:05. 8 बजे हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पे, एंड देन 8:05 पे जब हम वापस आएंगे, देन वी आर गोइंग टू प्ले कॉपी कैट कॉपी कैट, एंड देन आप गिव अवे जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट्स का. लेकिन उसके पहले, डिड यू ऑल नो फनेजिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे? जून 21 को है वर्ल्ड म्यूजिक डे. बिकॉज जिंदगी के हर मोमेंट में, हर ओकेजन पे, हर फीलिंग में गाना होता है यार, चाहे वो शादी वाला गाना हो या पार्टी वाला गाना हो, मतलब या दुख भरा गाना हो या खुशी भरा गाना हो, गुस्से का गाना हो या जोश वाला गाना हो, रेवोल्यूशन वाला गाना हो, सबका गाना होता है ना? सो फ्रॉम जून 1 टू जून 15, जो कि अभी चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हैं हमारे अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस पे या funasia.net पे, एंड यू कैन नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस द डिफरेंट जॉनरस. फनेजिया विल सिलेक्ट द मोस्ट loved song from each genre, and the songs have become the heartbeat of millions. मतलब आपके दिल को इस तरह से छू गई है कि भाई आपके बिल्कुल मेंटल, उसमें बिल्कुल दिल में इतनी बड़ी जगह बना ली उसने कि इट्स लाइक अ कोर मेमोरी नाउ. सो एवरी फनेजिया शो ऑन जून 21 इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू ए डिफरेंट जॉनरा. एंड अगर आपके जो चॉइसेस थे, अगर वो विनिंग सिलेक्शन में आ गए हैं, देन यू गेट टू विन सम एक्साइटिंग एक्साइटिंग प्राइजेस. सो गो अहेड एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि जितना आप नॉमिनेट करोगे हम भी वही गाने उतने ज़्यादा बजाएंगे. तो अगर आपको गाना पसंद है काठमांडू चल चल चल, जो कि मेरे को 2 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है, आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, हाँ जी मुझे पता है, इफ दिस इज यू, अगर आपको वो रिक्वेस्ट करना है एंड यू वॉन्ट दिस टू बी ऑन फनेजियाज रेगुलर प्लेलिस्ट, या फिर कोई और भी अगर हो, तो जरूर जाके नॉमिनेट करिए. नेक्स्ट आई एम गोना प्ले यू द सॉन्ग कॉल्ड वल्ला. भाई कुछ दिनों पहले ना, दिस सॉन्ग ओनली रिलीज लाइक 2 डेज बैक, ये कॉकटेल 2 का नया गाना है कॉल्ड वल्ला. एंड माई रेगुलर लिसनर इमरान, हु सच अ स्वीट लिटल गाय, ही कॉल्ड मी अप एंड ही इज लाइक, यू नो, कैन यू प्ले द सॉन्ग वल्ला? और मुझे ना फोन पे ना कई बार सुनाई नहीं देता, क्योंकि स्टूडियो में इतना शोर हो रखा होता है, समटाइम्स इट साउंड्स लाइक बल्ला. मैंने सोचा यार बल्ला इन कॉकटेल, बल्ला मीन्स तो बैट, तो व्हाट इज दिस बल्ला? तो मैंने उसको बोला सिमरान तुम्हें पता है बल्ला का मतलब क्या था? कहता क्या होता है? मैंने कहा बल्ला मीन्स बैट, वो कॉकटेल में बैट चला रहे थे क्या? आर दे प्लेइंग क्रिकेट और बेसबॉल? देन आई रियलाइज ओ नो, इट्स नॉट बल्ला यार, इट्स बल्ला. बल्ला मीन्स बल्ला बल्ला. I don't know what Valla exactly means, but it has something to do with the higher power. So let's just stay with that, okay? Enjoy the song.

enunciation is also a skill. Bhai, pronunciation and enunciation are two different things. Pronunciation is the correct way to speak a word. Okay, like development hota hai, development nahi hota hai, and bury hota hai, it's not bury. But वैसे ही enunciation is जब आप गा रहे हैं, जब आप poetry कर रहे हैं, उस word को पूरा खत्म करना चाहिए, या फिर उसकी clearly उसके consonants बोलने चाहिए. जैसे वल्ला को हम इतनी जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कई बार बल्ला ही सुनाई देता है. मेरी वहाँ से friend मेरे को DM कर रही है इंस्टा पे कि भाई मुझे तो बल्ला ही सुनाई दे रहा है. मैंने कहा भाई मुझे भी बल्ला ही सुनाई दे रहा है, बल्ला बल्ला बल्ला बल्ला. I mean think about it, अगर उसको English में translate करेंगे, it sounds like bat bat बैट बैट. चलो बैटिंग करते हैं भाई, सॉकर सीजन चल रहा है, कोई बात नहीं, हम तो पर बैटिंग करेंगे. पर ये गाना आप एंजॉय करिए, बैट से याद आया चक दे इंडिया का ये गाना.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth at mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
6: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha. तो सीधा वही ले चलो
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
9: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी बर्थडे सेलिब्रेशन फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड एंजॉय योर स्पेशल डे विद अस To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
12: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
13: Bhai, Dallas ki janta, aap ready hain number shumber dial karke. This is the time for the giveaway. Lekin giveaway hai kya? Bhai, jo mere impatient listeners hain, thoda thand rakho bhai. Mujhe pata hai, jaise hi maine giveaway ka naam kiya, yahan pe char calls waise hi aani shuru ho jati hain. To thoda thand rakho paaji. Pehle mere ko announce karna to giveaway hai kya? Well, this is your chance to win Kadhai Paneer or Kadhai Chicken from Chandigarh Bites in एलन प्लस इंजॉय अ स्पेशल थाली मंडे टू फ्राइडे, जो मंडे टू फ्राइडे आपको लंच आवर में ही मिलेगा. उनके नए डिशेस आते रहते हैं, ठीक है. लोकेटेड ऑफ ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, chandigarhbites.com पे जा सकते हैं डिटेल्स के लिए. और प्लस मेक श्योर कि अगर आपने ये पिछले एक महीने में ये वाला गिव अवे तो नहीं जीता है भाई, अगर आप ही सारे गिव अवे जीतते रहेंगे तो बाकियों को मौका कैसे मिलेगा, है ना. तो भैया फोन में नंबर डायल करके थोड़ा रेडी रहिए. दिस इज द टाइम फॉर द कॉपीकैट आवर, पम परम पम. इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम लिसनर्स हैं, आपको नहीं, अगर आपको नहीं पता, आई विल प्ले यू एन इंग्लिश गुजराती पंजाबी अफ्रीकन कोई सा भी गाना मैं बजाऊंगी और आपको बोलना है उसका हिंदी वाला वर्जन क्या है और कौन सा गाना है जो हिंदी में कॉपी करके बनाया गया था, बिकॉज हम लोग तो भाई थोड़े माहिर है उस चीज़ों में. तो एनीवेज मैं कई बार सोचती हूँ कि कहीं गाने ख़त्म ना हो जाए ऐसे करके, फिर मुझे नया सोचना पड़ेगा गिव अवे के लिए. लेकिन भैया हमेशा कोई ना कोई एक गाना तो होता ही है, यू नो, डोंट वरी. तो लेट्स गो, आर यू रेडी, एंड हियर वी गो.

0: भाई इतना तो मुश्किल नहीं है, कम ऑन.
1: अबे आग आ गया. एंड हाय, यू आर ऑन फनेशिया रेडियो, कैन यू हियर मी?
2: यस, आई कैन हियर यू.
1: ओके ग्रेट. व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? पहले तो
2: नेम इज राहुल एंड आंसर इज मिल गया हमको साथी मिल
1: गया. एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस राहुल, यू हैव वन.
2: थैंक यू.
1: ए कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. आई एम गोइंग टू टेक यू ऑफ.
2: वाओ,
1: आई नो, गो हैव सम फूड, मेक श्योर यू गेट सम नान विद इट. ओके,
2: थैंक यू. श्योर, आई विल वेट.
1: आई विल जस्ट एंड स्टे ऑन द लाइन एंड आई एम गोना पुट यू ऑफ एयर एंड टेक योर इन्फो. ओके एंड गाइज, आप तब तक ये वाला गाना एंजॉय करिए व्हाइल आई टेक एक सेकेंड एंड हियर वी गो.

जी गाइस, कैसे चल रहा है आपका थर्सडे इवनिंग? भाई वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जस्ट 2 days अवे. हैव यू मेड अ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स दैट यू आर गोइंग टू? इफ यू हैव नॉट मेड अ लिस्ट एंड इफ यू आर स्टिल यू नो इन योर यंग एज एंड यू नो अगर अभी तक यू आर स्टिल इन योर पार्टी फेज एंड देर आर लॉट्स ऑफ पार्टीज दैट आर हैपनिंग ऑल अक्रॉस DFW. इफ यू आर इन द फैमिली मैन, फैमिली वुमन, दैट काइंड ऑफ अ जोन, देन ऑल्सो देर इज लॉट्स ऑफ प्लेसेज यू कैन गो टू विच आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, सो वी आर नॉट गोना रिपीट दोज इवेंट्स. अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक कोई इवेंट चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप and ask for information regarding those events. But over other than that, मैंने आपको already बता दिया है. लेकिन if you are in the party spirit, there are a bunch of places where you can go to that host Bollywood Nights. There's several different clubs in Frisco, McKinney, and the one that I like to go to, which is in Addison, it's called Stadium Sports Grill. Al Amir भी एक है, वो भी Addison में है, if I'm not mistaken. Irving में बहुत से joints है. Go and have some fun. You know, kick off those shoes. भाई, you know what I did today? Today I became a full Texan. You know, not today, actually, this week. I actually learned the two-step or the line dancing routine to Footloose. और मैं ना अभी I was trying, मुझे बड़ा time लगा उसको करने में, but then I figured it out. And now I can go to any country club and kick off my cowboy boots, which I don't have yet, but one of these days I will invest in one and buy, and then I will go to a Texan country club, because you know, when in Texas, right? You all have heard of the saying, when in Rome, but I say when in Texas, because we are in Texas after all, isn't it? Anyways, guys, this part of the show is brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax firms in the US, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. Guys, I started the show with this thing ki this was just my own observation that a lot of the times, I don't know, the Indian mentality, the way we are taught by our parents ki you have to be humble, you have to be grounded, you have to be, you know, connected to your roots ki agar aapko koi compliment de raha hai to aapne accept kaise kar liya, it shows too much pride, it shows too much arrogance. Bhaiya, agar aapne mehnat kari hai na us cheez pe aur agar aapko koi tareef kar raha hai तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. उसमें कोई प्राइड वाली बात नहीं, उसमें ये एक्सेप्टेंस की बात है कि नहीं, मैंने मेहनत करी है एंड आई डिजर्व टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली, अगर आपको कोई पूरे दिल से कोई अपॉलोजी दे रहा है, कई बार हम लोगों क्या होता है ना, हमारी ईगो और एरोगेंस के बीच में, नहीं, अपॉलोजी के बीच में ईगो और एरोगेंस आ जाती है. कई बार आपको कोई जेन्युइनली अपोलोजाइज कर रहा है कि भाई आई एम रियली रियली सॉरी, कहता प्लीज तुम अपनी सॉरी अपने पास ही रख लो. मतलब ठीक है, मानना ना मानना वो आपकी बात है, लेकिन जो बंदा सॉरी बोल रहा है उसको सॉरी बोलने में भी कई बार यू नो एक ईगो आपको सैक्रिफाइस थोड़ी बहुत करनी पड़ती है सॉरी बोलने में, चाहे वो दिल से आए सॉरी या ना आए, लेकिन वो सॉरी इज सच अ हैवी वर्ड जो अगर कोई बंदा ट्राई करता है बोलने के लिए, यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट कि चलो भाई ट्राई तो किया कम से कम, यू नो, गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट वेदर और नॉट, इफ इट्स जेन्युइन और नॉट वो बात की बात है, बट ट्राई कर रहा है, चलो यू शुड गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. सिमिलरली, क्रिटिसिज्म इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स इन माई ओपिनियन. आई फील लाइक हमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट वी आर नॉट taught how to accept criticism and critique. Now, criticism is a very sensitive topic. Agar aapko criticize karta hai, and I have been that person too, jo kai baar mujhe na meri ego mein lag jata hai, tumne mujhe criticize kaise kiya, main to ye bol rahi hu, tumne mujhe aise kaise bol diya. But over the years, jitna I'm growing, jitna I'm interacting with people, jitna I'm talking to all my audiences and listeners, I'm like, bhaiya, ye cheeze jo main kar rahi hu, ye main aap logo ke liye kar rahi hu, I'm not doing this for myself. Agar mujhe apne liye karni hoti to main to apne aap se gaadi mein baat karti thi, wo to main hamesha se karti hu, there's nothing new in that. I'm driving and I'm having a conversation with myself or my imaginary friend. I don't need to come on the radio for it. But the fact that I'm here, and sometimes I get a lot of suggestions or critique and everything, and I'm really truly grateful ki jab aap mujhe suggestions dete hain, what you guys want to listen, and I want to curate the show according to my listeners' experiences. So you know what would be an amazing thing to do, you guys can actually follow me on Instagram, because kai baar kya hota hai jab aap call karte hain, the studio is very busy, mere paas kai baar 5-6 calls line se aa jati hain,
है एंड गाना भी प्ले करना होता है उसके बीच में, कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा होता है, दैट्स अ लॉट हैपनिंग. तो इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन जस्ट शूट मी अ क्विक DM एंड जस्ट टेल मी, हे वी वर लिसनिंग टू योर शो ऑन थर्सडे एंड वी थिंक यू शुड ऐड दिस, दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल बिकॉज देन इट इज़ रिटन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड एंड देन आई कैन रिमेंबर. मैंने कहा अच्छा एब्सोल्यूटली, यू नो. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट प्लीज रीच आउट टू मी, आई एम वेरी वेरी ओपन टू टेकिंग सजेशंस. एंड दिस इज अ लिटल सजेशन फ्रॉम माई एंड ऑल्सो. In your everyday life, if somebody is coming to you with some critique or criticism, don't get offended. Sometimes it can be for your, you know, best benefit. So what you need to do is, आपको उसको objectively analyze करना है. ये मैंने खुद से सीखा है. सारी criticism, सारे suggestions नहीं लेते हैं. I mean, that's what makes us, you know, grown adults with intelligent thought. कि आप criticism को जब 10 criticism आती है, तो आप सारे सुनो. उसके बाद यू एनालाइज लाइक अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेक, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू टेक, दिस इज समथिंग आई वांट टू टेक, दिस इज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस अमेजिंग, दैट्स व्हाट मेक्स अस एन इंटेलिजेंट बीइंग बिकॉज वी कैन मेक दोज डिसीजंस बाय आवरसेल्व्स. सो जो आपको चाहिए वो आप लो, जो आपको नहीं चाहिए उसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, उसको भूल जाओ. दैट्स सिंपल एज लाइफ, राइट. एनीवेज इसी से मैं आपको एक गाना बजाती हूँ. अगर आपको मुझे कोई सजेशंस देने हैं, प्लीज फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एज ip.music, which is ippi.music. I will spell that out for you also. India, Pakistan, Pakistan, India.music. And this is my Instagram handle. Reach out to me. I'm open to taking suggestions. Or if you want to share your stories, type them out so I can share it with the world. Go for it. And this is a song that I really like. So I'm going to play it for you.

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
3: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao. Yehi kaafi hai.
4: Aur wahi to sabse bada gift hai. All that your father needs is good food, great company, and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
7: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
9: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
11: Par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
12: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai. Especially jab Vanessa Events ka saath ho.
11: Sach mein? Sab sambhalenge?
12: Are sab kuch. Wedding ho, housewarming, graduation, you name it, they deliver. Venue, photography, hospitality, sab kuch ek hi jagah. Signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only.
13: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Guys, I love it जब आप मुझे call करके बोलते हो कि आपको मेरी stories बहुत पसंद आती है. You know, I spend a lot of time on the phone. Actually, maybe not that much time on the phone, but I do spend a significant, like we all do, okay? मतलब उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है. We all do that. So let's just accept it and go on with our lives, okay? So when I am scrolling, I find these like really amazing things, you know, like stories that heartwarming stories, या फिर बंदरों को आइसक्रीम खिलाने की स्टोरीज, या फिर जो स्टोरीज आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कॉल पे, एंड देन आई गेट टू शेयर दोज, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस, यू नो, वन. दैट्स व्हाट कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस, यू नो, कनेक्टिंग अमेरिका. बट विद कनेक्टिंग अमेरिका, लेट मी गो टू दैट, ओके? कनेक्टिंग अमेरिका, विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन्ड टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years or less. So don't wait, call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. I mean, I wasn't trying to really talk about the advertisement right there, but I was also genuinely saying that I love it when you guys connect with my stories, because I also, when I see those stories, kai baar to mere aankhon se actually genuinely aansu nikal aata hai. Maine kaha, oh my god, this is so heartwarming. Usi se related, I don't know if you guys remember, kuch hafton pehle, I think it was my first week when I had started, about 3 weeks ago or something, I had shared about this one uncle who sits at this Calcutta ke metro station ke bahar, aur wo na ek tooti hui violin bajate hain, theek hai? And that's how he makes his money. He's a pretty good violin player. Aur unka jo violin hota hai na, itna sur mein hota hai, wo wahan pe, you know, footpath pe baith ke, Calcutta ke metro station ke bahar, baith ke wo wala gana nahi tha? मेरे नैना सावन भादो, वो एक स्ट्रिंग पे वो बजा रहे थे. यू नो हाउ हार्ड दैट इज एज अ म्यूजिशियन, आई नो उसमें बहुत सारे सुर लगते हैं और वो चारों स्ट्रिंग चाहिए होती है वायलिन की, लेकिन क्योंकि वो बहुत गरीब है एंड ही डिडंट हैव द मनी एंड एवरीथिंग, वो एक ही स्ट्रिंग पे बजा रहे थे, लेकिन उसमें भी ही बेयरली मेड एनी मनी. ओके, कई बार तो उनके पास रात में खाने के पैसे भी नहीं होते, बट ही वॉज following his passion so much that was his main thing, and throughout the whole thing his wife was supporting him. So unke wife unke saath baithi rehti thi while he would play violin, and she would sit and listen to his music, and I thought that was really really beautiful. So I saw the story on Insta where somebody asked her ki aap log mile kaise, I mean how did you come in contact with each other and how did you like fall in love or whatever. तो उन्होंने बोला कि भाई ये जब छोटे थे बचपन में थे तो ये हमारे गांव में आए थे, मैं गुजरात में रहती थी, एंड ही इज़ बंगाली, तो कहते ये मैं गुजरात में रहती थी, ये हमारे गुजरात में ऐसे ही गांव का एक शो करने आए थे, नुक्कड़ वाला शो टाइप्स, और फिर आके उन्होंने वायलिन बजाया, मैं उनके म्यूज़िक से इतना प्यार में पड़ गई दैट आई बेसिकली फॉलोड हिम आफ्टर दैट अक्रॉस द कंट्री. मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, इस म्यूज़िशियन के पीछे मत भागो, लेकिन आई वॉज सो इन लव विथ हिज म्यूजिक एंड हिज सोल दैट आई फॉलोड हिम एंड आई एम स्टिल विथ हिम. अभी हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन म्यूजिक है और हमारा प्यार है, एंड आई थॉट दैट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड देन आई फॉलोड दिस क्रिएटर आराधना, शी हैज दिस लाइक पेज कॉल स्टोरीज बाय आराधना, अगर आपको मौका मिले तो जरूर चेकआउट करिए. शी ब्रिंग्स आउट दीज लाइक लिटिल स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम वेयर शी एक्चुअली ट्राइज टू हेल्प दीज पीपल. तो आराधना बाय डूइंग फंड रेजिंग शी रेज पूरे 1,00,000 रुपीज सो दीज पीपल कैन रेंट अ प्रॉपर शेल्टर, एंड देन शी ऑल्सो बॉट अ वायलिन, अ न्यू वायलिन फॉर दिस पर्सन, एंड द जॉय ऑफ मोर देन द मनी, it was the joy of receiving that new violin with all the strings intact. और फिर उन्होंने खुशी खुशी आराधना जी के लिए आराधना फिल्म से एक गाना भी बजा दिया. Isn't that amazing? So I just wanted to share that, and I saw that, I was like, yay, power of social media, woohoo. So I mean, if you guys ever have the opportunity to do something amazing like that, do it. What's stopping you?

हाय, सो ड्रामेटिक. मुझे तो बड़ा मजा आता है. आई लव ड्रामा. आई वेंट टू वीरदास शो अ फ्यू मंथ्स अगो, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वॉज, यू नो वाई वी वॉच बॉलीवुड मूवीज? वी वॉच बॉलीवुड मूवीज बिकॉज वी लव ड्रामा यार, एंड दैट इज वाई बॉलीवुड इज लाइक टोटली फुल ऑफ ड्रामा. आप कभी भी चलोगे ना रास्ते पे, हमेशा आपकी इंटरेक्शन भी होगी. ऑल द कॉन्वर्सेशन एंड एवरी थिंग इज सो फुल ऑफ ड्रामा. एक और उससे मुझे एक ख्याल और आया, मैं उस दिन सोच रही थी, विच इज दैट व्हाई इज इट दैट ऑल बॉलीवुड मूवीज रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ लव एंड रोमांस? आई मीन दैट्स प्रीटी मच द अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड मूवीज, यू नो. तो उससे मैं ये समझ में आया, देन आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स. मैंने कहा माई पेरेंट्स हैव बिन इन अ, यू नो, मोस्टली अ हैप्पी मैरिज फॉर द लास्ट 35-40 years ऑफ देयर लाइव्स, ओके. एंड आई हैव नेवर एवर एवर हर्ड देम से आई लव यू टू ईच अदर. आई हैव लिटरली नेवर हर्ड माई पेरेंट्स से दैट. हैव यू हर्ड योर पेरेंट्स से दैट? इफ यू हैव, देन यू आर डेफिनेटली अ रेयर वन इन दिस वर्ल्ड हु हैज सीन एन इंडियन ओल्ड कपल, बूमर कपल, से आई लव यू एंड फीलिंग्स ऑफ लव टू ईच अदर. अगर आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने तो नहीं सुना है. बट एनी वेज गाइज, उसी से एक गाना सुनते हैं एंड देन वील कम बैक एंड देन वी टॉक सम मोर, ओके?

भाई अभी थोड़ी देर पहले जब गाना बज रहा था ना, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम अरुण जी. उन्होंने भी यही मेरे से, ही अग्रीड विद मी, ही सेकेंडेड माई थॉट, विच इज दैट आई डोंट थिंक वी हैव हर्ड आवर यू नो ओल्डर पेरेंट्स और दैट जेनरेशन एवर से दो प्यार की दो मीठी मीठी बातें. भाई गालियां बहुत सुनी है, एक दूसरे को इंसल्ट करते हुए हमने बहुत सुना है, देखा भी हुआ है, लड़ाई करते हुए सुना है, लेकिन प्यार की तो मीठी मीठी अप्रिशिएट करने वाली बातें नहीं सुनी मैंने तो. इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से, मेरे लिए भी उन्होंने, आई नो दे लव मी वेरी मच, बट दे हैव लिटरली, आई डोंट थिंक आई एवर रिमेंबर आई लव यू बेटा करके ऐसे कभी बोला है, क्योंकि उनको वो फीलिंग सिखाई नहीं जाती. आई फील लाइक दैट इज वाई जो बॉलीवुड मूवीज जो है ना, इतना दे रिवॉल्व अराउंड प्यार मोहब्बत एंड ऑल ऑफ दैट, सिंपली बिकॉज वी लैक दैट इन आर डे टू डे लाइफ. अगर आप सोच रहे हो अगर हमारी अपनी खुद की लाइफ में वो नहीं है और हम उसको पूरा करने के लिए हम स्क्रीन्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं वो वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, तो अगर हम अपनी लाइफ में वो ऐड कर देंगे, वो बातें बोलना मुश्किल होता है. इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस लव, आई टोटली गेट इट, इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इफ दे हैव ग्रोन अप इन अ जनरेशन जब उनके पेरेंट्स ने भी नहीं उनको कभी अप्रिशिएट किया, या उनके पेरेंट्स ने भी कभी ये नहीं बोला कि भैया आई एम प्राउड ऑफ यू, या फिर आई लव यू माई जानेमन, ऐसे करके मतलब एक दूसरे के लिए भी नहीं बोला. सो आई आई कंप्लीटली कंप्लीटली गेट इट, यू नो. तो अभी मैं उन अरुण जी को बता रही थी कि मेरे पापा को अगर मैं कभी हैप्पी बर्थडे भी बोल देती हूँ तो उनको थैंक यू भी नहीं आता कई बार बोलना, वो कहते हैं ओके ओके, और वो ऐसे हाथ दिखाते हैं, कहते हैं ओके ओके आई हैव रिसीव्ड इट, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, बट ही विल नेवर से द वर्ड्स थैंक यू. आई डोंट नो वॉट इज इट विद दैट जेनरेशन एंड एक्सेप्टिंग यू नो कॉम्प्लीमेंट्स और विशेज एंड ऑल ऑफ दैट. एनीवेज गाइज, आई केम अक्रॉस दिस रियली कूल रीमिक्स टुडे. And I heard it and I saw these two creators on Instagram like dancing so amazingly to this song. And this is a mix of like a bunch of Bollywood tunes with Eminem ka Without Me. So it features Eminem ka gana Without Me, Joote Do Paise Lo, O Humdum Sunyo Re, aur ek aur gana bhi hai usme. Sabko mash up karke, chota sa hai, but I really enjoyed it. Why don't you listen to it and tell me how you like it or not?

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: ना सब और प्राइस
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरोइन हूँ।
5: हीरे मोती मैं ना चाहूँ।
6: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
10: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
11: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
11: सच में बिल्कुल घर जैसा।
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
15: गाइज, हम फीलिंग्स वगैरह की बात कर रहे थे। आज आपने अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने किसी भी दोस्त को कभी बोला है कि, आज बोला है आपने जाके कि भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, या फिर आई लव यू, या फिर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या कीप गोइंग, वी आर हियर विथ यू, words of encouragement make a huge, huge difference to someone's lives. So, if you don't have anything to offer to anyone in terms of gifts or whatever, doesn't matter. Sometimes words of affirmation is more than enough. Sometimes we lack that kind of a feeling that, you know, sometimes all people want to hear is just two words of affirmation, just a thank you, just a little line saying, hey, I'm thinking of you today. You know, you can say that to a friend too, and it's totally okay. Say that and see what the result is.

गाइज, मेरे जाने का वक्त आ चुका है. आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई और मेरे जो अलग अलग गाने जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्रॉस द डेकेड्स, आपको वो भी पसंद आए. यू नो, वी आर नॉट लिमिटिंग आर सेल्फ टू वन जनरेशन और वन डेकेड ओवर हियर. हमने 1930s, 40s के भी एक गाने बजाए और थोड़े मॉडर्न गाने भी बजाए. एवरीथिंग इज़ लाइक अ मिक्स बिकॉज यू नो वॉट, समटाइम्स सॉन्ग्स आर जस्ट एवरग्रीन लाइक दैट, यू नो. सो it's all about the vibe, you guys. It's all about the mood, it's all about the vibe, and it's all about expressing those emotions. तो अपने घर वालों को जाके बोलो how much you love them, how much you appreciate them, and see how much love you get back in return, because it's the best feeling out there in the world. I'm gonna leave you with a new song. Not a new song, actually. This is a very old song. It's a 4-year-old song. इट फीचर्स कामाक्षी खन्ना एंड ओफ. अगर आपको नहीं पता ओफ कौन है, ओफ रिसेंटली कंपोज ट्यून फॉर दिस बॉलीवुड मूवी फीचरिंग, मैं भूल गई, मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर बताती हूँ. तब तक आप गाना सुनो.

अच्छा याद आ गया, देखो ओफ इज द पर्सन हु कंपोज दैट सॉन्ग कॉल्ड डूबे फ्रॉम द मूवी गहराइयां, जिस फीचर्स दीपिका पादुकोण, सिद्धांत, अनन्या एंड धैर्य, अनन्या पांडे एंड धैर्य. तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक, डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल बॉलीवुड मूवीज. गो चेक इट आउट.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में? सब संभाल लेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: Hi, hello, namaste. कैसे हैं आप सब? रात के 10 बज चुके हैं और अगले 2 घंटे तक हम हैं यहाँ आपके साथ काव्या, सिर्फ और सिर्फ 104.9 फनीशिया पर। चाहे आप घर पर रिलैक्स कर रहे हो या ना ड्राइव कर रहे हो या सिर्फ आज पूरा दिन का थकावट दूर कर रहे हो, आज की रात हम हैं आपके साथ बैठे हुए यहाँ और बजाने वाले हैं सारे बॉलीवुड, ज़बरदस्त बॉलीवुड सॉन्ग्स। चलिए अभी हम डालेंगे ये दूसरे गाना।

0: Hey guys, अब है जून के मंथ। वैसे जून के महीने देखते ही मेरे को ना बचपन की याद आ जाती है, जैसे कि वो आखिरी परीक्षा जब हम समर वेकेशन के लिए वेट करते रहते हैं, और फिर जो स्कूल की छुट्टियाँ, और फिर कजिन्स के साथ मस्तियाँ, खेल कूद, हमारे पड़ोसी के साथ। सो ये सारे समर की याद आते रहते हैं, और फिर तभी पता ही नहीं चलता गर्मी हो रहा है या हम मस्ती में खेल रहे हैं। सो द समर इज ऑल अबाउट हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। पानी पीते रहिए, आपका हेल्थ ध्यान रखते रहिए। डजेंट मैटर कि आप अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खेल कूद या इतना ज़्यादा काम काम काम करते हुए। सो इसी गुजारिश ऑफ द सॉन्ग के लिए अब हम बजाने वाले हैं नेक्स्ट।
1: अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी?

प्यास पास, ये था याद करने के लिए इस समर के लिए टू बी हाइड्रेटेड और पानी पीते रहिएगा। आजकल के ज़माने पता नहीं बहुत कॉक शॉक सब चल रहा है, बट हमारे इंडिया में वी हैव मैंगोज, हमारे मैंगो लस्सी, ठंडी ठंडी नारियल की पानी, मज़ेदार हो जाता है लाइक सब्जा जब आप पानी में डालते हो। हाउ मैनी ऑप्शंस वी हैव दैट नेचुरली हाइड्रेट योर सेल्फ, यू नो। सो आपके पास इतने ढेर सारे ऑप्शन है, देन आई वुड प्लीज रिमाइंड यू ऑल टू बी हाइड्रेटेड फॉर द समर, क्योंकि आप सुने जा रहे हैं कि इंडिया में भाई साल में पहली बार इतना बड़ा हीट स्ट्रोक हो रहा है। सो आप भी पीते रहिए और अपने आपके आजू बाजू में जो भी आपके पसंदीदा लोग हैं उनको भी याद दिलाते रहिए। और तो अगले गाना ये है आपके लिए।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता?
1: तबर्रुक मिलता है, मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत।

यार दोस्तों, पता है बॉलीवुड सॉन्ग्स की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? हर मूड के लिए एक ना एक गाना मिल जाती है। या खुश हो, या सैड हो, या ड्राइव पर हो, बस चिल करे रहे हो। चलिए अब सुनते हैं आप और एक मस्त गाना इस ट्रैक के ऊपर।

दोस्तों, संडे नाइट का भी अपना ही अलग सीन होता है। पता है, वीकेंड तो ऑलमोस्ट आ ही गया है और फ्राइडे का वेट भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी वीकेंड मूड में हैं, और ये रहा आपके लिए अगले गाना स्पेशली आपके लिए, इसमें ओल्ड सॉन्ग्स एंड देन नया का एकदम रीमिक्स है सब के जनरेशन के गाने की, क्योंकि तो बहुत मज़ा आएगा और सबको पसंद आएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग।

कल सुबह जल्दी उठना है कि ये सोच कर जल्दी सो जाते हैं, और फिर इस एक वीडियो एक रील करके एक सारे रात एक एक एक करके पूरा रात अब रील देख कर ही बैठे होंगे। अगर आप भी अभी तक जागे हो रहे तो वेलकम टू माय क्लब। चलिए सुनते हैं अगले गाने ट्रैक पर।

उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। मत पूछो, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे।

वैसे था गाइस, ये फ्रॉम मूवी गजनी। गजनी की मूवी तो मैंने आपको याद दिला दी, हाय। पर इसके जो क्लाइमैक्स है सबको याद है, इट्स वेरी मच सैड स्टोरी बट वेरी मच डीप इन दी प्यार वाले। वैसे गाइस, आजकल के इतने सारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ रिलीज़ होते हैं और इसका ट्रैक जो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो ये हमारी ये पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ है ना, ऐसे बहुत कुछ कितने बार भी देख लो ना, बोर बिल्कुल नहीं होता है। वैसे ही ये है उनके गाने जो इतना यादगार रहता है, आजकल तो ये मेरे सारे प्लेलिस्ट में बजते ही रहते हैं। चलिए मैं सुनाती हूँ और एक खुशी वाली, अच्छी वाली, जो यादगार नेक्स्ट सॉन्ग इन द ट्रैक।

वैसे दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी कि हमारे बचपन कैसे बीते थे रात के समय। तो ये जो समर के टाइम रहता है ना, जब ठंडी ठंडी पानी छिड़कते हुए इस कूलर में से, और फिर हमारे रेडियो ऑन है जहाँ पर पुराने गाने बज रहे हैं, कितनी अच्छी लगती है ना वो फीलिंग जो मैं वापस लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो ये सॉफ्ट गाने जब रेडियो में से बजते हैं ना, तो इट फील्स सो प्लेजेंट। बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। तो उसी खुशी के लिए चलिए अब हम बजाएंगे हम आपके लिए एक अगला गाना। हियर वी गो।

ओके गाइस, पता ही नहीं चला दोस्तों कि ये 2 घंटे कैसे निकले गए। उम्मीद है आप सबका सफ़र जो अभी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं और आप जो काम या कोई रिलैक्सेशन टाइम जो चल रहा था, का शायद मैं आप सबको ये टाइम स्पेशल बना रही हूँ, पुटिंग माई ऑल, जो मैं गाना लगा रही थी आपके लिए। तो आप सबको साथ देने के लिए दिल से थैंक यू। और मैं हूँ काव्या, आप सब से थैंक यू, बाय बाय बोलने। आपका ख्याल रखिएगा एंड बहुत अच्छी नींद लीजिएगा, बहुत एनर्जेटिकली रहिए कल सुबह न्यू डे के लिए, एंड देन बी थैंकफुल फॉर द न्यू डे जो हमें भगवान दिया जा रहे हैं। एंड बी हाइड्रेटेड, प्लीज़ बी स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हेल्दी। एक ही तो ज़िंदगी है, आपने तो ख्याल रख लीजिए। ये कहते हुए गुड नाइट।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं। और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

Hello everyone, you're tuned into 104.9 FM Funny Share Radio. क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट once used to be a currency? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट was money. Imagine आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे. जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है. मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
3: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: सन्नी आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times I love you बोलेगा। By God, I'm looking red hot.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: He's got very little time.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनी पाजी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरे तेनू हाले, पार्टी कर दे हैं तू।
3: पाजी, उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल हो गए, दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी, तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए हो या?
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है। पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
3: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
5: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the Karya Siddhi Hanuman Temple in Frisco.
14: First ever authentic Sattvic flavors with no onion and garlic.
13: Where every divine food is an offering. Open daily from 7 a.m. Located at Independence and Eldorado. Shri Ayodhya Bhavan, where taste meets divinity.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: What a lovely track, and I know that sent you back to yesteryears and made our airwaves very, very nostalgic. And thank you for all your calls. I'm glad you enjoyed that song.
1: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions, and it deserves the right guidance.
2: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
1: I believe every home journey should feel exciting, stress-free, and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating, or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
4: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
0: और सुनाओ हाउस हंटिंग कैसी चल रही है
6: क्या बताऊं इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट ही इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
7: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
8: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
8: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
10: हाँ
9: घर रिलोकेट करनी है
10: हाँ
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
10: हाँ भाई हाँ
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Isha Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: The voice of Frank Sinatra on the airwaves of the Fun Asia Network here. Ladies and gentlemen, I'm going to give you the number here in the studios. For those of you who will call in, I am going to take your calls as we go into a quick break here. And while y'all are listening also to some messages from our sponsors and our advertisers, I want to thank them a moment here for being with us all the way. Always. So please call us if there is anything I can do for you, whether it's a song to play, a dedication, a suggestion, a comment, anything. We will be happy to take your calls. 972-235-5555 is the number here in the studios, and you are tuned to your morning drive time special right here on the airwaves of the Fun Asia Network. You can also listen to us on funasia.net. In case you're not in the car.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग है।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
13: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
12: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
14: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
15: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
16: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग, और ऊपर से ये स्ट्रेस।
17: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
16: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
17: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
16: ये क्या होता है?
17: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
18: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
19: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
20: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पंजने दरिया जिनकी अलग है कहानी, तेरे हुस्ना दा दरिया भी चढ़िया तूफानी. ब्यूटिफुल ट्रैक एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा. दैट यू ऑल कैन सी व्हेन एवर यू ऑल वांट. It is going to be at a theater near you releasing today. And that pretty much is my show for today. I do hope you enjoyed it and found it informative. I do enjoy bringing it to you every morning from 7 to 10 right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Me too will be coming on right after me, and you'll continue listening to the Fun Asia Network. You can do that on Radio Sangam also at 104.1 FM, Radio Caravan, also Apna Punjab and Radio Vanakkam in Tamil. Whatever you prefer, whatever language you prefer, you can go ahead and tune in. We have five radios for you, 24 hours a day. Ujala is right now on Apna Punjab, and you can listen to her also for some Punjabi music. Of course, Tamil at Radio Vanakkam, and Radio Sangam has all the Telugu music that you want to listen to. Right now, it is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
5: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू'ल सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
8: Chicken banana. Chicken banana?
9: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
16: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
17: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
18: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
19: Calculating route. Rerouting.
18: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
19: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
18: Kyun?
19: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
18: Achha, to seedha wahi le chalo.
20: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
19: Your new destination has arrived.
21: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

Good morning, listeners. Aap sabka bahut-bahut swagat hai right here on the airwaves of Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Paul Bhatia, staying today for Simi, who's not here today. So, aaj aapki subah start karte hue, I came across a lovely article and maine socha ki chaliye ye baat to main definitely apne listeners ke saath share karungi. It's about a 100-year-old World War II veteran. और उनके बारे में क्या उनको खुशी मिलती है लाइफ में करके, वो क्या करते हैं, वो 100 साल के हो गए हैं तो उनकी तरफ से क्या एडवाइस है, लॉन्जिविटी टिप्स क्या हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. क्योंकि ये सच बात है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पजल समटाइम्स, कि कुछ लोग कहते हैं कि भी हम सब करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते कि डिजीज आ जाता है, बट दैट इज़ लाइफ राइट. उसके बारे में तो सच में कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या डिजीज आ जाए, लेकिन व्हेन वी सी पीपल हु हैव लिव लॉन्ग एंड हु हैव लिव लाइफ फुली, देन एटलीस्ट वी कैन टेक सम नोट्स एंड टिप्स एंड सी हाउ वी कैन बेनिफिट. बट ये पहेली तो है, इसी बात पे ये गाना आप लोगों के लिए.

0: Kill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
3: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
2: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
4: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
11: हाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा का एक मिनट लास्ट का बचा था तो मैं वो भी प्ले करना चाहती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, क्रिसेंडो पे आ गया था, एंड आई वांट टू एंड विद दैट.

0: 9726906623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार।
1: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: We got

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Bed jao. Pakka. Kali to teri gaari ne signal pe dam tod diya tha.
4: Wo thoda overheating tha.
3: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो.
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
15: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
16: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
17: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
18: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
19: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

was that song happening or what? Even though Abhijeet Bhattacharya has called it a little bit of a bhajan, I don't know. वो पंगा ये हुआ कि भाई पहले ये गाना जिस फिल्म में था उसके राइट्स नहीं दिए गए और देर वॉज अ बिग थिंग हैपनिंग एंड नाउ एवरी थिंग इज सॉर्ट ऑफ सेटल्ड. सो लाइक आई सेड, आजकल थोड़ा बॉलीवुड में पंगे चल रहे हैं लेकिन दीज पंगाज नीड टू एंड. और ये इसी बात पे बहुत ही कूल सा गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ. बेशरम रंग, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विशाल एंड शेखर का म्यूज़िक है. ऑफकोर्स इसमें शिल्पा राव की आवाज़ है और ये गाना काफ़ी सेंसेशनल था व्हेन इट केम लाइक व्हाट अ ईयर एंड हाफ बैक व्हेन पठान केम. डेफिनेटली सेटिंग अ डिफरेंट आइडिया ऑफ what you wear, how you carry yourself. It was just oozing with confidence. And that was Deepika Padukone in this particular song. So I'm going to play this song for you in just a sec. I will want to tell you that couple of giveaways are coming your way. So yahi rahiye, kahin mat jaiye. Aur sunte rahiye, jise kehte hai na, bane hi rahiye. Bas hum logon ke saath aap bane hi rahiye. Jahan bane rahenge, wahin baat aage badhegi. Aur isi part pe bata do ki that this part of our show is brought to you by AD Fintechs, one of the fastest growing tax firm in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. So for more information, call AD Fintechs, unka number hai, note kijiye, 469-942-9888. That's 469-942-9888. Or you could also visit their website, which is agfintax.com. Enjoy.

राग खमज में ये गाना एक किसी मास्टरपीस से कम नहीं है. बहुत ही सॉलिड गाना है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, इसमें फीलिंग है, इसमें वो जज्बा है जो कि पूरी फिल्म को इकट्ठे लेके आता है. और डेफिनेटली अरिजीत सिंह का वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, आई विल हैव टू से दिस. रियली रियली ब्यूटिफुली सॉन्ग, ग्रेट म्यूजिक. विद दैट लिसनर्स, कुछ और बातें होंगी और आपके लिए कुछ क्विजेस भी आ रहे हैं जिससे आप जीतेंगे अ फ्यू थिंग्स. सो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू लिसनर्स. विद दैट, एज वी मूव फर्दर विद दिस प्रोग्राम, द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू. And the next song is very special because baat thodi der pehle happy life, long life, right choices ki ho rahi thi. To ye sab maine kaha ye share karu aaj. Ek ye hai ki kuch tips ye ki aap apni energy kaise better kar sakte hain, how can you live a happier, healthier and more productive life. To ek to bahut hi basic baat hai which I think especially all desis, we are very well aware of that, which is eating nourishing food. Because we've grown up with that. We've grown up with our parents, our grandparents. ये खाओ, ये मत खाओ, इसमें ये क्या कर रहे हो, ये fast food अच्छा नहीं है, इसमें कोई value नहीं है food में, ये वो वाला food मत खाओ. We've grown up listening to that. So it's now our nature and we are very likely to say that to our kids. And our kids are very likely to say it to their kids. So a well-balanced, healthy diet is at the core of well-being. But it's common to regard healthy eating primarily as a tool for weight loss. According to 2020 Dietary Guidelines for Americans, a balanced diet high in fruits and vegetables, lean protein, low-fat dairy and whole grains is needed for optimal energy. You really are what you eat. So consuming a variety of foods from all food groups to get a range of nutrients to provide energy throughout the day. Opt for fresh or frozen fruits and vegetables, especially nutrient-dense, dark, leafy greens and broccoli, as well as orange vegetables like carrots and sweet potatoes. You can choose from many types of fish and legumes to choose from the healthy protein options, and also aim to eat 3 ounces of whole grain cereals, breads, rice or pasta daily. So hum sab to ye khate hain. In fact, sardiyon mein to khoob sarson ka saag chal raha hota hai, aur waise bhi Indian desi diet mein vegetables are a big thing. साथ साथ प्रोटीन भी बढ़िया होता है. जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें दाल, छोले, राजमा से प्रोटीन मिलता है, दही से. एंड जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको तो डेफिनेटली मीट्स से मिलता है. सो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर फोकस. इसके बाद मैं बताऊंगी कि कितने घंटे सोना ज़रूरी है. ये सब आपको वैसे पता तो है, लेकिन समटाइम्स इट डजंट हर्ट टू हियर इट अगैन. It just is one of those things. When you hear it again, you feel, okay, yeah, I forgot about that. With that, the next song is right here for you.

All right. Congratulations going out to Rashmi Gawali, who has won this giveaway from Red Hot Chili Pepper. Congratulations. A lot of people called and I think they had most of the answers, but maybe one was missing, either the actress sometime, either the director or the music director. तो आपने अब सुन लिया, ये बिल्कुल सही है. और ये फिल्म इज डूइंग, इट्स गॉट रियली ग्रेट रिव्यूज. अनुराग कश्यप की डायरेक्शन वैसे भी बहुत ही हटके होती है, टॉपिक्स भी हटके होते हैं, और ये जो पर्टिकुलर फिल्म है उसको काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिल रही है. और नाम है इस फिल्म का बंदर, BANDAR. जो गाना आप सुन रहे थे पिंजरा है, और बॉबी देओल की इसमें एक्टिंग बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अप्रिशिएट की जा रही है. Well, with that, yes, I have another giveaway coming your way. And but before that, I'm going to go ahead and play a song. And uske baad ek aur giveaway aa raha hai. To kahin mat jaiye, bas yahi rahiye, bane rahiye aur sunte rahiye Phanesia Radio. That's always bringing the community together.

पत्नी और वो दो इस फिल्म का नाम है आयुष्मान खुराना इस फिल्म में है, उनके साथ है वामिका, रकुल प्रीत, सारा अली खान एंड ये जो आपने आवाज़ है हीर की इसमें जो आपने सुनी एंड विद दैट लिसनर्स हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट गाने की ओर. इनफैक्ट राइट नाउ इज द टाइम फॉर अ क्विज. जो मैं नेक्स्ट गाना आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ आपको सेम थिंग इसके बारे में मुझे बताना है कि म्यूज़िक डायरेक्शन किसने दिया है, फिल्म का क्या नाम है, हीरो हीरोइंस का क्या नाम है एंड इसको किसने डायरेक्ट किया है. इट्स लिटरली द सेम क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड फॉर द वन बिफोर. द मूवी वॉज बंदर बट दिस वन इज नॉट बंदर, इट्स अनदर मूवी एंड आई एम आस्किंग द सेम थिंग. नेम ऑफ द फिल्म, हीरो हीरोइन, म्यूजिक डायरेक्टर एंड डायरेक्टर. सो आर यू रेडी? आप क्या जीतेंगे ये तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ, नहीं तो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं प्ले. Here's your chance to win a special grocery hamper from India Bazaar, Fort Worth. Your one-stop destination for authentic Indian groceries, fresh produce, spices, snacks, and all your daily desi essentials. India Bazaar, located at 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst, and Haslett. You can ask any question, and the question I'm going to ask is going to be very, very simple, like I mentioned to you. So basically, just make sure that you are ready to give me the answer, but you have to redeem this within 7 days, this particular offer. Remember, this India Bazaar location is in Fort Worth. And here is the song. Tell me the name of the film, the actor, actress, music director and director.

All right, तो संतोष कुमार बिंगी ने जीता है ये गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. कंग्रेचुलेशंस. उन्होंने सारी बात बिल्कुल बिल्कुल सही बताई. तो दिस वाज लाइक अमेजिंग. ये फिल्म थी पेडी और ये गाना आपने सुना. बहुत ही कूल सा गाना था. बहुत ही कैची सा गाना है. कैची से याद आया कि आजकल जो इतनी सारी पिक्चरें चल रही हैं लेटेस्ट जिसे कहते हैं ना बॉलीवुड फिल्म्स, दे आर डूइंग रियली वेल. कुछ फिल्म्स तो डायरेक्टली आपकी यू नो दे कम इन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल. तो काफ़ी चीज़ें इस वक्त चेंज हो रही हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए रूप की रानी का गाना चलाया और एक और जो नई पिक्चर आई है वो है वेलकम टू द जंगल. आई एम गोना प्ले दैट नेक्स्ट फॉर यू. उसके साथ साथ अब बारी आ गई है मेरी जाने की. आई हैड अ वंडरफुल टाइम एज ऑलवेज ब्रिंगिंग अ शो फॉर यू लिसनर्स. दिस इज योर होस्ट पारुल भाटिया. बी सेफ, बी ब्रेव एंड कीप इट रियल, जेन्युइन एंड हैपनिंग विद फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting, rerouting.
1: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
3: वन मिस्टेक डजंट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर अ DWI और DUI चार्ज कैन ब्रिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग लाइसेंस सस्पेंशन फाइंस एंड इवन जेल टाइम बट यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन एट माथुर लॉ ऑफिसर्स PC वी प्रोवाइड एक्सपीरियंस्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन क्रिमिनल डिफेंस मैटर्स इंक्लूडिंग DWI केसेस
4: वी ऑल्सो असिस्ट विद रिलेटेड लीगल इश्यूज इंक्लूडिंग इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस एवरी केस इज डिफरेंट द राइट लीगल स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक फैक्ट्स and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
11: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
12: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
11: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच इट एक्सीड्स पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स सर्टिफाइड टीचर्स कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज ट्राई लुमिटी यू सी द डिफरेंस किड्स एजेस 5 टू 13 कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
14: Main expert lifeline use karna chahunga.
13: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
15: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स returns needed to apply और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं Results सिर्फ 10 मिनट में
4: बिजनेस लोन options को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA Loan Experts फैसला क्लैरिटी के साथ
16: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
16: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
17: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Exactly the feeling जो हम सब को अभी feel करना चाहिए. It's 45 minutes past 12 o'clock on a Friday afternoon. And hello, welcome, namaskar, sat sri akal. This is RJ Ramita on your favorite radio station 104.9 FM Fun Asia. रेडियो यार, फ्राइडे आफ्टरनून का मूड ही कुछ और होता है. यू नो, दिल काम पर होता है लेकिन दिमाग ऑलरेडी वीकेंड प्लान बना रहा होता है. यार कोई मूवी प्लान कर रहा है, कोई फैमिली के साथ आउटिंग, और कुछ लोग बस इस इंतजार में है कि कब 5 बजेंगे. अब क्या कर सकते हैं, 5 बजे तक तो शायद मैं आपके साथ नहीं रह सकती, पर अगले 2 घंटे हम इस वीकेंड की शुरुआत करेंगे विथ ग्रेट म्यूजिक, फन कन्वर्सेशंस और कुछ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्या करूँ, पॉजिटिविटी की बहुत स्केसिटी हो चुकी है आजकल, तो उसी के उसको ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का आफ्टरनून अड्डा ओनली ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM, वेयर द वीकेंड ऑलरेडी बिगिंस. एंड टू बिगिन विद बैक टू बैक 2 गाने फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2.
1: बस गाने बनने में दिल नहीं करती, जो जब तक है तब तक है.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Afternoon Adda with me, Rimita. I know, bahut din baad aap se mulaqat ho rahi hai, but let's be honest, aaj Friday yaar, aaj kuch bhi ho sakta hai. You know, Friday morning alarm aur Monday morning alarm mein sirf 4 din ka fark hota hai, lekin feeling ka fark 400% ka hota hai. Honestly, aaj office ka workload bhi thoda sa halka hai. I mean, अगर ना भी हो तो आपको अंदर से वही वाली फीलिंग आती है कि है हल्का है. ट्रैफिक भी अगर आप गाड़ी में हो, ट्रैफिक अगर मंडे जैसा नहीं भी है, हल्का भी है, तो आपको अंदर से वो बुरा भी नहीं लगता है. आई मीन, अगर ट्रैफिक हैवी है तो बुरा भी नहीं लगता है. और बॉस का जो ईमेल है वो भी उतना स्कैरी लगता नहीं है. क्या आप भी फ्राइडे को ऑफिशियली सर्वाइवल रिवॉर्ड डे मानते हो मेरी तरह? यू नो, फ्राइडे इज द बेस्ट वर्क डे फॉर मी. आपका क्या ख्याल है? स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. लेट मी नो हाउ इज फ्राइडे ट्रीटिंग यू, और यू आर ऑलरेडी ट्रिपिंग हाई नाउ.

हैरत है मुझे कि इट्स ऑलरेडी 9 मिनट्स पास्ट 1 o'clock ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून और अभी भी आपने अपना लंच का प्लान नहीं बनाया. चलो अगर नहीं भी बनाया तो मैं मदद कर देती हूँ. मैं कौन? दिस इज रुमिता ऑन हर शो आफ्टरनून अड्डा टुडे ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. चलिए बात जब छेड़ी है मैंने लंच की, देन व्हाई नॉट हैव दोज कबाब्स एंड फ्लेवर्ड चाट और वो जो फ्यूजन बाइट्स होते हैं और उसके साथ साथ रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? एक ही जगह, एंड दैट इज Page 3 ईटरी विच इज इन द हब 121 इन मकीनी. सीरियसली I have been to this place multiple times with my friends and families, and if you haven't been there yet, then you're seriously missing out something really special. Kyunki yahi hai na jahan pe Indian street food will meet the modern flair. Chahe aap brunch mein jaiye, lunch mein jaiye, dinner mein jaiye, date night mein jaiye, ya aise hi kuch acha khane ka man ho, to jaiye yaar. Page 3 Eatery again, it's a perfect mix of flavor, energy and vibrant vibes. And if you have to know all about their menu, then you can explore more in the page3eatery.com. Again, it's located in the hub 121 in McKinney.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. Main hu Rimita and this is Afternoon Adda. And ladies and gentlemen, that was Nora Fatehi, jo kafi news mein and charcha mein hai. And for obvious reasons and for a grand reason, because she has recently, I mean today, 12th of June, she has already performed at the second FIFA World Cup 2026 opening ceremony, jo ki BMO filled in her hometown, Toronto, mein, Canada, mein ho chuka hai. And she has performed in the official World Cup anthem, Sir Sir, alongside with French singer Vega Dream and Bangladeshi producer Sanjay. Waise, main is baare mein thori confused hoon ki yaar kaun si wali thori official World Cup anthem hai, ye wala ya phir wo Shakira wala jo कुछ हफ्ते पहले मैंने सुना दाई दाई. अगर आपको इस बारे में कोई भी क्लैरिटी है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए. स्टूडियो का नंबर इज़ 9452355555 9722355555. क्योंकि ना क्या करूँ, थोड़ी फुटबॉल के बारे में थोड़े नॉलेज कम है मालिक, क्या कर सकते हैं. वैसे इट्स द वर्ल्ड कप फीवर ऑल अराउंड एंड होना भी चाहिए यार, इतना पॉपुलर स्पोर्ट है. मेरा थोड़ा नॉलेज कम हो तो क्या हुआ, आई नो आपका तो फेवरेट है. पर इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ, आपके लिए एक गिव अवे दे सकती हूँ. और आज शाम को पिज्ज़ा खाते खाते आप आज का मैच देख सकते हैं. उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, बने रहना है, क्योंकि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ, सिंपल सा है, छोटू सा सवाल है कि ये गाना कौन से मूवी का है. इट्स अ पॉपुलर सॉन्ग एंड इफ यू आर अ डाई हार्ड रोमांटिक तो बता दो यार. अगेन स्टूडियो का नंबर इज 9722355555 और आपको मिल सकता है फन पिज्जा किचन से एक $10 गिफ्ट कार्ड. सो हियर आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, डू कॉल इन.

प्यार है, प्यार है, आई एम श्योर प्यार है. और पिज्जा से किसको प्यार नहीं होता है, इसीलिए तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं. वैसे हमें पता है, आपको भी पता है, दैट दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी वो लम्हे. बट जिन्होंने पहला कॉल किया है मुझे, उनका नाम है गणेश पेदिनी जी. कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस फन पिज्जा किचन $10 गिफ्ट कार्ड. एंड एज डिस्कस्ड, आज का मैच और पिज्जा के साथ, यानी कि अचारी पनीर पिज्जा हो या फिर तंदूरी चिकन पिज्जा, कुछ भी आप चूज कर सकते हो. एंड स्ट्रेट अवे एंजॉय द वाइब, एंजॉय द फ्राइडे नाइट, यानी कि इट्स फ्राइडे ऑलरेडी फॉर यू. फिलहाल यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून अड्डा विद मी रमिता, एंड आई विल बी देयर विद यू टिल 2:30 PM टुडे. टिल देन, दिस इज फॉर यू.

0: 49 minutes past 1 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Ramita on her show Afternoon Adda. Today it's a Friday. And one question is, you know, how much mirchi or how much spice is too much spice? Kabhi socha hai?
1: Mirchi, mirchi, mirchi, nazar tirchi, shakal firni, harkat filmi, girl do you feel me?
0: Ji haan, mirchi, yahi to baat hai. Because Sal's chicken is bringing the ultimate inferno spice challenge. Wo kya hai? Here's the deal. You have only 10 minutes. Aapke paas 10 minute honge. 3 jumbo extra hot tenders, ek matlab one by one usko finish karne ke liye. Yani ki aapko agar spice level bahut aapka tenacity hai, aapka kha sakte ho aap mirchi, then definitely you can try out this inferno spice challenge jo ki ho raha hai Salsa Chicken meal. Aapko 3 jumbo extra hot tenders to milenge, uske sath ek chhota sa ek cup mein ek cup doodh milega, you know, to level up the spice, but you cannot dip into it. To aap agar is 3 jumbo ko finish kar de, तो क्या क्या प्राइजेस है आपको, मैं एक बाय मतलब वन बाय वन आई एम गोना टेल यू. इफ यू फिनिश वन जंबो टेंडर यू गेट अ फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 days. डी एंड इफ यू कैन फिनिश टू जंबो टेंडर्स तो फ्री सैंडविचेस फॉर 15 days. और अगर तीनों के तीनों खत्म कर लिए यू विल विन द ग्रैंड प्राइज जो कि है फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 days. कैन यू इमेजिन ये सब चीजें कहाँ हो रही है, एक ही जगह हो रही है. दैट इज Sal's Chicken इन Richardson. दैट इज हैपनिंग ऑन जून 14th, 4 बजे से. सो इफ यू आर अ स्पाइस लवर एंड यू आर यू नो ऑन द गो टू टेक अ चैलेंज ऑफ दिस स्पाइस लेवल ऑन दिस इन्फर्नो स्पाइस चैनल, हेड टू Sal's Chicken इन Richardson ऑन द 14th ऑफ जून, संडे.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Ramita aur Fry. Ye chal raha hai aaj afternoon adda mein. I mean, tell me honestly, agar aap parents hai, to Friday ka matlab aapke liye relaxation nahi hota hai. Friday ka matlab hota hai kal subah soccer practice kitne baje hai. ये रिमाइंड करना अपने आप को, अपने पार्टनर को, किस बर्थडे पार्टी में इस वीकेंड में जाना है उसके लिए आपको तोहफे खरीदने पड़ते हैं, और किस बच्चे को पिकअप और ड्रॉप करना है, है ना ये होता है ना. और फिर भी हम कहते हैं यार वीकेंड आ गया, अब आराम करेंगे. पर कहाँ, कब, कैसे, कब और कैसे का मुझे पता नहीं. कहाँ का आई कैन टेल यू. अपना अगर घर हो सजाया हुआ तो वहाँ पे आराम करने का मजा ही कुछ और है. और घर की बात जब हो ही रही है, देन इफ यू आर प्लानिंग कि आप अपना घर खरीदेंगे या फिर उसे बेचेंगे या रिलोकेट करेंगे DFW में कहीं भी, देन लेट नवनीता खेमका विथ केलर विलियम्स रियल्टी गाइड यू विथ एवरी स्टेप. क्योंकि ना उनकी जो पर्सनलाइज सर्विस है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है और जेन्युइन केयर है. कौन है हमारी अपनी नवनीता खेमका. शी विल गाइड यू एंड हेल्प यू रिलोकेट एंड एस्टैब्लिश योर होम home in DFW, around DFW, if I might say. Call her Navneeta Khemka today at 347-449-4242.

0: Super Mama, ready? Ready? 1, 2, 3.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
5: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
6: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
5: Sach? Ya phir court decide karega?
6: Wait, what?
7: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता
14: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: जिस बात का डर था वही हुआ. लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। अरे कहना क्या चाहते हो?
21: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
22: भूख लगी
23: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
24: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
25: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
26: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

10 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phoneesia Radio. And this beautiful, beautiful, beautiful, beautiful track was dedicated. Actually, was requested by Mr. Anshul. So, unko sunna tha kuch romantic gana, kuch soft gaane. Aur I don't think at the top of the mind, mujhe isse behtar gana abhi isi waqt mila nahi. So, Anshul, I believe that you have enjoyed this song. Kyunki, as you said, 20 minute aap gaari mein ho, aap sunoge ye gana. Waise, aaj Friday ka traffic thora sa zyada bearable lagta hai. Kyun? Anshul ji, manoge ki nahi. Abhi kyun? Kyunki na, aapko pata hai ki kal subah 7 baje alarm nahi lagana hai. Same red light, same highway, bas mood थोड़ा सा बेटर है एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि कभी कभी ना हैप्पीनेस बहुत ही सिंपल सी होती है. वैसे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं और अगर आप गाड़ी में हो और अनफॉर्चुनेटली मैं चाहती तो नहीं हूँ बट अनफॉर्चुनेटली कभी भी यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार ऑन ट्रक एक्सीडेंट या फिर आप कहीं गिर गए हो, सीढ़ी वीढ़ी लगाया था, गिर गए, चोट वोट लगी है, तो डॉक्टर को कॉल करने से पहले यू मेक श्योर दैट यू हैव द करेक्ट अटॉर्नीज नंबर. दैट इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा हु विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपनसेशन जो आप डिजर्व करते हैं. यू नो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आजकल डील करना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और अगर अटॉर्नी ओमर ख्वाजा आपके साथ है तो क्या ही बात है. यू डोंट नीड टू पे हिम अंटिल यू विन द केस एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ओमर ख्वाजा. सो कीपिंग द फ्राइडे मूड इंटैक्ट थोड़ा सा मस्ती मजाक हो ही जाता है. क्यों?

That was taken from the movie Gabbar is Back, starring Akshay Kumar and Kareena Kapoor Khan. Well, Akshay Kumar is back again, charche mein, because his movie Welcome to the Jungle is releasing next week. Trailer aa chuki hai, directed by Ahmed Khan. This franchisee, I think it's franchisee ki third installment hai, and star cast ki to agar list mein abhi parna shuru karu to sham ho jayegi, kyunki itne sare लोग है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम द 90s, ऑल द कॉमेडियंस. अगर आप बॉलीवुड बफ है और सारे 90s के फिल्म्स आप देख चुके हैं, एंड अभी अगर आप you know the comedy shows, you watch each and every comic actor, rather each and every powerful actor is there in this movie Welcome to the Jungle. But primarily Akshay Kumar would be seen as the lead, of course, but I just hope and pray ke bhai ye movie chal jaye, because back to back he's faced a lot of flops films back to back pichle kuch saalon se. I know if you're अक्षय कुमार फैन योर सेल्फ, आई एम ऑल्सो, बट क्या है ना, दुख होता है क्योंकि इतने एक्सपेंसिव स्टार है, इतने मेहनती स्टार है, इतने बड़े स्टार है, बट फिल्म्स आजकल उनकी चल नहीं रही है. खैर छोड़िए, देखते हैं वेलकम टू द जंगल क्या कमाल करती है, क्योंकि यार कुछ ना उनकी बैंक बैलेंस में तो कुछ असर होने नहीं वाला है इसका. बट आप अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा सा इधर उधर, और रादर यू कैन मेक इट अ लिटिल बिट बेटर विद कनेक्टिंग अमेरिका, क्योंकि ना आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी. एंड हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज दिस विल बी बूस्टिंग योर बॉटम लाइन. फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद कनेक्टिंग अमेरिका. ओके, कनेक्ट विद कनेक्टिंग अमेरिका. सो कॉल टुडे एट 321-888, यानी 321-888-7345, और विजिट कनेक्टिंग अमेरिका financials.com and start turning your daily expenses into income. Plus वो help करते हैं homeowners को pay off their mortgages in 10 years or less. So देर मत कीजिए, connecting America for you ladies and gentlemen. And this is Ramita for the show Afternoon Adda, only on Phoenicia Radio 104.9 FM.

25 minutes past 2 o'clock. You're listening to Phoenicia Radio 104.9 FM. This is Rumita and almost वक्त हो गया है मेरे जाने का और मेरे बाद आ रही है RJ मधुलिका. I know you're used to आपकी सुनहरी किरण, but क्या कर सकते हैं? She is on her holidays now. So Madhulika is going to be with you till 5 p.m. today. और आज ये सफर हमारा और आपका काफी interesting रहा with all the information, with all the fun, with all the songs and with all the love from you guys, DFW. और Fridays का ये जो special time होता है, ये special इसलिए नहीं होता क्योंकि ये weekend almost है. Friday special है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि एक और week complete हो गया है. Bills, responsibilities, deadlines, parenting, work pressure, सबके बीच हम फिर एक Friday तक पहुंच ही गए. और honestly, कभी कभी ना उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना भी जरूरी होता है. सो दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम शो टुडे आफ्टरनून नड्डा. हैप्पी फ्राइडे डीएफडब्ल्यू.

0: our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
5: Wo thoda overheating tha.
4: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu, dhua dhua? क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का
9: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
10: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693474401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
11: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory NMLS 2025289 licensed mortgage broker in Texas all loans subject to credit approval equal housing lender
12: Aaj sunte ho soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare
13: India mein to yahan jo friends aur relatives hain wo kaise attend karenge
12: par yahan sare arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga
13: hello tum Dallas mein ho yahan koi bhi event karna super easy hai especially jab Vanessa events ka saath ho
12: sach mein sab sambhal lenge
13: are sab kuch wedding ho housewarming graduation you name it they deliver venue photography hospitality sab kuch ek hi jagah signature events ka decor aur khana by the renowned Basera Grand only
10: call Hari Basera on 4694428770 Vanessa Events your celebration partner
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio

Welcome, Namaskar, Kushamadid, Funny Share Radio 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का Just Chill, well Just Chill तो मैं लेके आती हूँ Saturday and Sunday 10 AM to noon होता है मेरा और आपका साथ. फिलहाल आपको मैं स्वागत कर रही हूँ 104.9 FM के हमारे शो पे, विच आई एम कवरिंग फॉर किरण. मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. जैसे कि मैं मंडे से लेके आज फ्राइडे तक हर रोज़ कुछ अलग तरह के गाने चाह रही हूँ कि प्ले करूँ आपके लिए. सो आज मैंने सोचा कि क्योंकि वीकेंड है और वेदर भी कुछ हट के हो रहा है, राइट, कभी धूप कभी छाँव कभी घटा कभी बारिश, तो सोचा कि कुछ गाने वेदर से रिलेटेड और कुछ फ्राइडे है तो आइटम नंबर्स विल बी प्लेड. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555.

All right, well, that was जुम्मा चुम्मा, टेकन फ्रॉम द मूवी हम. एंड यस, आज हम सुन रहे हैं या तो कुछ आइटम नंबर्स या फिर कुछ ऐसे बॉलीवुड हिंदी पॉप एल्बम्स गाने जिनमें कि कुछ वेदर की बात मेंशन हो. भाई आज वेदर भी थोड़ा ऐसा ही है, राइट? आंधी तूफान, धूप छाँव, बारिश बादल. सो अगर हैं कोई गाने आपके मन में तो ज़रूर गिव मी अ कॉल. द नंबर इज 9722355555. दिस इज़ मधुलिका. मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक.

Well, that was of course taken from the movie Sholay. अच्छा होता है ना कभी कभी कि मन भर गया है यार ग्लासेस पहन पहन के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के वो सोल्यूशन में सब धो धा के. तो भाई आपको बता दूँ दैट देर इज समथिंग दैट यू मे नॉट नो एंड दैट इज लेसिक. लेसिक इज जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू टूडे. डॉक्टर शहजाद बाटीवाला फेलोशिप ट्रेंड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो. इनकी अप्रोच बड़ी सिंपल सी है दैट एजुकेट फर्स्ट. सो ही विल एजुकेट यू फर्स्ट सो दैट यू नो एंड यू कैन मेक द best decision for your eyes with confidence. So to learn more about these options and see if you are a candidate, aap unhe call karein. The number is 214-972-2020 or you can visit lasikplano.com and of course do mention FunAsia 2020 to receive a free consultation. Right? So the next one, ab nazar ki baat chali hai, so here's the next one. Do enjoy.

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी कालिया। अच्छा, आपको पता है कि वैसे भी ये थंडर स्टॉर्म, बारिश, बादल, आंधी, ये सब हो रहा है, तो आपको मुझे लगा कि बताऊं कि लाइटनिंग जो है स्ट्राइक्स अर्थ रफली 100 टाइम्स एवरी सेकेंड, यानी कि धरती पर करीब 100 बार एवरी सेकेंड लाइटनिंग जो है इट स्ट्राइक्स।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: जिस बात का डर था वही हुआ. Lymphosarcoma of the intestine.
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अब्री, फ्लावर Mount Irving, Prosper, Anna. Any location you are close to. Call 214-666-6259 or visit PassionHealthPrimaryCare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
12: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
14: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
16: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route, rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
17: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
16: क्यों?
17: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
16: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
19: कहाँ गया, कहाँ रखा था. सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है.
20: कौन सा?
19: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
20: अरे सारे तो सेम है.
19: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
20: ओ हाँ, ये तो अलग है.
14: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
21: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
22: Jud jao apni dharti se, desiyon ka sachcha radio channel. Fun Asia, 104.9 FM.

ऑलराइट, अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे, एंड द गिव अवे इज फ्रॉम नियॉन कैक्टस। जी हाँ, आपका जो डीएफडब्ल्यू जी, आपका जो फूड सीन है वो थोड़ा बदल रहा है, राइट? बदलेगा इसलिए कि आप जाएंगे नियॉन कैक्टस, जहाँ पर मैक्सिकन फ्यूजन विल मीट ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जी हाँ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस और बहुत से वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं, ऑल पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर्स। एंड जो वाइब मिलेगी दैट इज़ यंग, कलरफुल, मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी, एंड इट्स परफेक्ट फॉर हैंग आउट्स, डेट नाइट्स और योर नेक्स्ट चिल प्लान, राइट? सो टॉप इट ऑफ विद क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे, एंड स्पेशल डील्स एवरी सिंगल डे, एंड यू कैन विन अ $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन बाय आंसरिंग दिस simple question. So well, yes, hi, this is Madhulika and I'm going to give you an English translation of a song and tell me which song I'm talking about, right? So translation kuch is tarah hai, that I got so tangled up in your words that without even realizing it, I lost my heart to you. I repeat, the English translation of this Bollywood song is, I got so tangled up in your words that without even realizing it, I lost my heart to you. So tell me which song I'm talking about. Studio number 972-235-5555.

0: Alright, that was taken from Ra.1 and मैंने पूछा था नियॉन कैक्टस के गिव अवे के लिए ये सवाल एंड सवाल था ये कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किस हिंदी गाने का है एंड द ट्रांसलेशन वेंट समथिंग लाइक आई गॉट सो टैंगल्ड अप इन योर वर्ड्स दैट विदाउट इवन रियलाइजिंग इट आई लॉस्ट माई हार्ट टू यू एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस हाय यू आर लाइव ऑन एयर
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, my name is Nidhi. Hi, I'm good. How are you?
0: I am doing great, Nidhi. Thank you for asking. So, bataiye, kaun se gaane ki baat ho rahi hai?
1: This is song, Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya.
0: Bingo, bilkul sahi jawab. Dekhi aapne ye movie?
1: Yes.
0: Awesome. मुझे ना ये मूवी तो अच्छी थी ठीक ठाक थी I loved this song. पता नहीं मुझे वो कोरियोग्राफी इसकी ना is so catchy, isn't it?
1: Yeah, yes, yes. The one
0: आपने जीत लिया नियॉन कैक्टस का ये गिव अवे आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड वाइल आई एम गोना प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स आई टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू ऑलराइट थैंक यू थैंक यू

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: I've been researching retirement planning.
2: Oh, really? Where?
1: Google, YouTube, a guy on TikTok.
2: Or you could just talk to WealthTactic.
1: What's the difference?
2: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
3: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
0: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
7: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
7: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas' smartest fleet partner.
13: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Zindagi ek safar hai suhana.
15: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 Kaiser Way, Suite 205.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक, covering in for Kiran today. So well, स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. If you have a dedication, are you celebrating something, if there's a shout out, weekend है, mood में अगर कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनने का है, then definitely give me a call. The number is 972-235-5555. 55 55.

अल्लाह हू टेकन फ्रॉम द मूवी कुर्बानी। अच्छा, अगला गाना प्ले करूँ उसके पहले मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ आपको डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट देता है वो स्केड्यूल करता है फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग यू नो टेक्स टाइम। तो ऐसे ही नहीं कि बस जल्दी जल्दी आपको देख लिया, आपको अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे, बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली। And for you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care is there. And saath hi saath, they are growing. So they are hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. So agar aap interested hain and you are passionate about patient care, then do send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com, or you can text them. The number is 217-454-4639 for more information. या फिर आप विजिट करें passionhealthphysicians.com, और यू कैन कॉल देम, द नंबर इज 214-666-6259। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल से।

वेल, आपके आ जाने से तो पता नहीं, बट इन जिनकी मैं बात बताने वाली हूँ उनके आ जाने से आपका दिल भी बहलने वाला है और आप खूब जम के नाचने भी वाले हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल एंड शेखर, जो कि अपना सुपर हिट टूर लेकर आ रहे हैं डैलस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस करवल सेंटर इन गार्लैंड. सो यू कैन बाय योर टिकट्स नाउ, दे आर ऑन सेल एट कैश पटेल प्रोडक्शंस .com. दैट्स कैश पटेल प्रोडक्शंस .com.

You're tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ, वैसे लेकर आती हूँ Just Chill, जो हाँ करते हैं हम, as the name suggest, Just Chill, every Saturday and Sunday होता है मेरा और आपका साथ, सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक. Well, फिलहाल, I'm covering for Kiran, मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555, आने वाला है आपके लिए एक गिव अवे भी. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं या आप किसी को जानते हैं उस गॉट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, तो आप अटर्नी उमा ख्वाजा को रखें याद, एज न केवल वो आपका केस लड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे, एंड यू डू नॉट पे until you win. So for a free consultation, आप उन्हें call करें. The number is 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. And this segment is brought to you by Omar Khwaja.

ऑलराइट, जैसा कि मैंने कहा था कि एक गिव अवे आ रहा है आपके लिए. सो दैट गिव अवे इज फ्रॉम फूडिस्तान. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स लाइक पानीपुरी या फिर फ्रेश गन्ने का जूस या फिर इवन एन अप स्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, देन यू नीड टू विजिट फूडिस्तान विच इज इन ऑबरी. राइट, सो फूडिस्तान जो है ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस. सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको. प्लस साथ ही साथ दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड दे ऑल्सो डू फ्री डिलीवरी टू ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. तो भाई अब आ गया आपका चांस टू विन a free item from the Vibe restaurant, the upscale Indian restaurant located inside Foodistan. तो आपको करना बस आसान सा ये काम है कि आपको मुझे कॉल करना है 972-235-5555 पर और बताने हैं कोई भी दो गाने गोविंदा और कटरीना कैफ के. जी हाँ, सो टेल मी एनी टू सॉन्ग्स फीचरिंग गोविंदा एंड कटरीना कैफ एंड जीत जाइए आप ये फूडिस्तान का गिव अवे.

नहीं, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी पार्टनर. वेल हाँ, इसलिए रही थी कि इनका जो डांस भी होता है ना, इट इज़ सो मच फन जस्ट टू वॉच. एंड ऑफ कोर्स गाने भी अक्सर गोविंदा के इतने पैपी होते हैं कि यू एंड अप डांसिंग योर सेल्फ. वेल एक और गाने की रिक्वेस्ट आई कि जब गोविंदा का गाना प्ले हुआ तो उन्हें ये गाना बड़ा जोर से याद आया. सो वेल हियर इट इज़, एंजॉय.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली।
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
4: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
6: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
7: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
6: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
8: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
9: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
12: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
13: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
14: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
15: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
14: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविन।
19: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
19: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
19: ये क्या होता?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
21: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
22: इंडिया में?
0: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
22: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
23: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूं मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. कवरिंग इन फॉर किरण. स्टूडियो का नंबर 9722355555.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted. Style defined.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को,
8: first ever authentic सात्विक flavors with no onion and garlic,
7: where every divine food is an offering, open daily from 7 a.m. located at Independence and Eldorado, श्री अयोध्या भवन, where taste meets divinity.
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
13: Paid for by Mark Hill for Mayor.
14: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
15: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
14: के टू ड्राइव मतलब
15: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
14: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
15: 100%
16: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट ketodrive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
17: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
12: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
18: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
19: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ. अब और ढूंढने की जरूरत नहीं। विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
20: सच में बिल्कुल घर जैसा।
19: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
21: मामू देखो क्या हो गया।
22: ओ क्या हो गया?
21: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
22: ओए जर्मन का कमाल है।
21: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
22: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
23: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
24: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. Thank God it's Friday, dosto. From surviving the week to owning the week. That is what it is. It's Friday and you know what that means. Good music, good vibes and great company. Thank God it's Friday. और वीकेंड ड्रॉप इन हो चुका है अर्ली क्योंकि मेरा शो आ चुका है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे विद योर होस्ट नवनीता फ्राइडे के फ्राइडे 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन थैंक यू सो मच टू मध्य उल्लिका जिन्होंने इतना खूबसूरत शो किया है अभी मेरे पहले एंड या वी आर मिसिंग किरण बट यू गो विद सो मच लवली इन्फॉर्मेशन मधुलिका एंड थैंक यू फॉर दैट लवली शो ये ब्रांड न्यू गाना जो अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगा इन द बिग थिएटर्स कॉकटेल 2 एक के बाद ये दूसरा कॉकटेल गाना सुनते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं

वाई वी वाई वी वी वाई वी सुपर डुपर कूल है ना. ऐसा ही होता है जब एक गाना रिलीज होता है विच हैज दैट वाइब. फ्राइडे नाइट के वाइब के लिए वाला गाना टोटली इन. शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना और ये गाना जो आप सुन रहे थे प्रीतम का म्यूजिक है सुपर डुपर. अमिताभ भट्टाचार्य के जब बोल होते हैं ना तो ऐसे ही होते हैं, जस्ट खलो के लाइक gets into the everyday life. हम जैसे बातें करते हैं ना उनके lyrics वैसे होते हैं. So just very very easily gets into our understanding. Thank you दोस्तों. Understanding से याद आया, अगर आप understand करें ना कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपके सपने क्या है, आपके वो सपने absolutely पूरे हो सकते हैं when it comes to home mortgage. ड्रीम होम मोर्गेज का साथ जब आपके साथ हो. 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ये इतने सारे फैमिलीज को हेल्प करते आ रहे हैं एंड यू नो दे कैन टर्न ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. 50 स्टेट से भी ज़्यादा में वो हैं लाइसेंस्ड और उनकी एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर टू योर नीड्स. आप या फिर खरीद रहे हो आपका पहला घर, अपग्रेड कर रहे हो या फिर रीफाइनेंस कर रहे हो, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे. 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. 104.9 FM फन एशिया रेडियो के साथ साथ साथ चलने के लिए शुक्रिया. कड़ी पे ध्यान.

into Blowing 104.9 FM Fun Asia Radio. ये खास शाम ही है जो खास है क्योंकि आपके नाम है. All these lovely, beautiful, खूबसूरत गाने. फोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. थोड़े वक्त के लिए जीनी बनी हुई हूँ मैं. देखिए मैजिक वॉन्ड है मेरे पास. जो हुक्म आका क्या सुनेंगे आप, फोन उठाइए, नंबर दबाइए. बजा रही हूँ आपके कुछ गीत अभी अभी, लेकिन ये वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहेगा. एंड विल मूव ऑन टू माय प्लेलिस्ट, बट दिस वन जस्ट फॉर यू राइट हियर. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर.

0: सफायर ऐसे लगता है ना, सफायर जिसको नहीं पता हो, शाबाश ऐसा कुछ लगता है, बट इट इज सफायर. सो यस, एड शीरन जब गा रहे हो तो सफायर साउंड लाइक सफायर, ऐसे ही साउंड करता है. 104.9 FM फनी जो रेडियो सुन रहे हैं दोस्तों. वैसे पता है, माय टाइम एक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई, they help individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. Aap ya fir plan kar rahe ho for long term wealth, retirement ya fir growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Aap visit kar sakte hain mytimeequity.com ya fir call kijiye 469-702-1272. aaj hi. Chaliye lete ek chota sa break, lekin kisi ne kaha, मेला वही है, खिलौने वही हैं, खरीदे जाने की जिद भी वही है, पर मैं अब वहाँ किसी और के साथ जाता हूँ. जिद करने वाला नहीं, जिद सुनने वाला बन गया हूँ. हाउ ब्यूटिफुल. व्हेन यू गो विद योर लिटिल वन, खिलौनों के लिए जिद कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं वहाँ थे.
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
4: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: अब पंजाबी आ गया.
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस. फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू. एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे. कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल. पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन. मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर first visit.
13: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
4: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
14: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
15: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-244.
13: 4458 or visit lawsontravel.com.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
16: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to FunAsia Radio.
0: स्वागत है आप सबका 104.9 FM Fun Asia Radio पर. गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैमो नाचो केम छो. आप सब खास होंगे क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है तो वीकेंड का वाइब ऑटोमेटिक आ जाता है. पूरे दे हफ्ते का स्ट्रेस दूर हो जाता है, लगता है यस नाउ द टाइम इज माइन. वैसे जिंदगी चल तो रही है, चलते चलते किधर जा रही है ये अभी तक आपको पता चला है कि नहीं चला है, पर जहाँ भी अभी जा रही है गाड़ी आपकी ऑन अ फ्राइडे इवनिंग, उधर एब्सोल्युटली धमाल है. यही होना चाहिए फ्राइडे इवनिंग का वाइब. वैसे आज मैंने कहा था जीनी हूँ और वॉन्ड घुमाई हूँ और मैंने कहा है जो हुक्म आका क्या सुनेंगे आप, फोन उठाए, नंबर दबाइए. ये दो गाने मैंने लिए हैं विच आर रिक्वेस्ट जो प्ले हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरा सेगमेंट आने वाला है स्टार कलाकार को मुबारकबाद. कोई है जो जन्मदिन मना रहे हैं, कौन है, उन्हें हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी ये गाना जॉर्ज की तरफ से आप सबके लिए है.

0: मैंने कहा था दो गाने बजेंगे जो आपकी पसंद होंगी, मैंने घुमाया वो जीनी वाला वॉन्ड और कहा जो हुक्म आका क्या सुनेंगे आप, फोन उठाइए नंबर दबाइए। सैम साहब की ये फरमाइश थी, तो सैम दिस वन आउट फॉर यू। नाउ द जीनी टाइम गेट्स ओवर एंड वी गेट इनटू एन अमेजिंग अमेजिंग सीक्वेंस एंड अ सेगमेंट।
1: I'm so sorry. Sorry, yeah.
2: अरे मैं कब से रुका हूँ?
1: बस दी कर चले।

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके, चल ठीक है, प्लीज।

That was for Sam. Hi, Sam. Did you enjoy your gana? जो आज बजा है आपके लिए ऑन द जीनी टाइम. जीनी टाइम का मज़ा ही ऐसा होता है. यू नो, हम एक जीनी को जानते थे जो कहते थे आप जब वो लैम्प को रब करते हैं और वो जीनी बाहर आता है और कहता है जो कुमा का क्या सुनेंगे आप, और वही है जो हम कहते हैं जो हुकुमा का क्या सुनेंगे आप. और ये सारे जो अमेजिंग म्यूज़िक का ज़माना है उसी से होता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे. और वर्ल्ड म्यूज़िक डे ख़ास दिन है जिसे कौन सेलिब्रेट करेगा. फन एशिया तो ऑफ कोर्स करेगा, राइट? एंड फन एशिया सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूज़िक डे क्योंकि हर एक गाना बहुत ख़ास होता है. Every moment has a song as well. कोई शादी हो, कोई प्रपोज करना हो आपको, कुछ मूड अच्छा करना हो, या दिल टूट गया हो, या कोई आपको किसी को मनाना हो, हर कुछ के लिए कोई गाना होता है. एंड वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक्स फॉर एवरी मूड. जून 1st से शुरू हुआ है जो हम ये बात कर रहे हैं. जून 15 तक चलेगा, जब तक आप एक गूगल फॉर्म में जाके नॉमिनेट कर सकते हैं अपने वो फेवरेट गाने को अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. ऑलराइट? और फनेजिया विल सिलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग फ्रॉम ईच जॉनर एंड द सॉन्ग्स दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. और जो गाना सीरियसली बहुत ज़्यादा वोट पाता है, 21st जून वर्ल्ड म्यूजिक डे को एवरी फनेजिया शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक जॉनर फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस, जो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है. एंड सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है, द लिसनर्स हुज सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इनटू आवर फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस. रियली, आप विजिट कर सकते हैं फनेजिया.net और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. सेलिब्रेट कीजिए द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद फनेजिया 104.9 FM, क्योंकि हर मूड का, हर वक्त का, हर एहसास का, हर बात का, हर ओकेजन का एक गाना होता है.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are you sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
12: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
11: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
14: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को.
15: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
15: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
17: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
18: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
17: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
18: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
14: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
19: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
14: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.

0: hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs.
3: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एजा रेडियो पर। चलिए, म्यूजिक की बात हो रही है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाएगा फन एजा पर। तो म्यूजिकल कोई ऐसा इंसान है जो, यहाँ बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, वो मेक अस डांस, सम मेक अस थिंक, एंड दे आर सिंगर्स हुज वॉइस गो स्ट्रेट टू द हार्ट, दिल को छू जाते हैं, जैसे कि ट्रिंग ट्रिंग, यू नो, दिल का भंवर करे पुकार, या फिर यू कैन ऑलवेज से दिल से दिल की बात जब दिल पर लगे तो लगती है ठाएं, वो आवाज़। और वही आवाज़, वन ऑफ द वॉइसेस आई एम सेलिब्रेटिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव वॉइसेस ऑफ आवर जनरेशन, डिस्पाइट ही बीइंग रिजेक्टेड फर्स्ट ऑन इंडियन आइडल अर्ली इन हिज करियर to becoming one of Bollywood's most sought after playback voices. और मैं समझ सकती हूँ, जब मैं ये बोल रही हूँ तो आपके दिमाग दिल में एक ही सिंगर का नाम आ रहा है, लेकिन वो सिंगर ये नहीं है। There's another singer जो reject हुए थे Indian Idol में, और फिर और वो इंडियन आइडल में जजेस में पैनल में सोनू निगम भी थे, और एक बार इस सिंगर को AR रहमान ने बोला कि तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, अपने हुनर पे काम करो और फिर आओ। लेकिन ये सिंगर बहुतों के दिलों को छू गए। कौन है ये? फोन उठाइए, नंबर दबाइए, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। Let's see if you can guess it.

Yes, thank you. It is Jubin Nautiyal. And Jubin Nautiyal ka jawab Rahul Agarwal ne diya. Thank you so much for your answer. You got it right. Main sochi, logo ko lagega, ye to Arijit Singh hai, jo rejected hue the, aur phir sabke dilon ko chhute hai, aur unki awaaz is wow. But you know, even after being rejected on Indian Idol early in his career, and he has become one of Bollywood's most sought after playback voices. And Rahul Agarwal ne aaj jeet liya hai Flavor Lounge mein chance to win a dal makhani dhaba style chicken curry at the Flavor Lounge restaurant, which is located on Preston Road in Frisco. Aur very good, congratulations aapko Rahul, that you said it right. Aur unhone kaha ki mujhe तुरंत ही समझ में आ गया था कि ये है जुबिन नौथियाल. एंड यू नो ही मैनेज टू बी एट द टॉप 70 बट अनफॉर्चुनेटली रिजेक्टेड बाय द जज पैनल विच इंक्लूडेड लेजेंडरी सिंगर्स लाइक सोनू निगम. वैसे ये बहुत ही दिग्गज रहे हैं, देहरादून बिलोंग करते हैं, वहीं पर ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज ट्रेन्ड इन म्यूजिक फ्रॉम अ वेरी यंग एज. पैशन फॉर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है इनको और स्ट्रगल तो बहुत हुई थी जब एआर रहमान ने उन्हें ये भी कहा था तुम वापस जाओ और थोड़ा सा कुछ सीख कर आओ कम्प्लीटली फिर आना. और वैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम, ड्रम्स, ओह माय गॉड, व्हेन ही केम टू इंडियन आइडल हम सब हैरान थे ये एक इंसान है, एक बंदा है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा कैसे लेता है. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. ये जो गाना आपने सुना ना एक मुलाकात, ये इनकी फर्स्ट नहीं होने वाली थी. इट वाज शौकीन्स जो मैं गाना बजाने वाली हूँ, लेकिन शौकीन्स इसका ये गाना एक मुलाकात डिड नॉट डेब्यू विथ इट, जबकि इन्होंने डेब्यू गाना यही गाया था प्लेबैक सिंगिंग जो अभी बजाने वाली हूँ. एंड द गाना दैट केम आउट वाज द एक मुलाकात सॉन्ग फ्रॉम सोनाली केबल, which was recorded later, but वो बहुत ज़्यादा popular हुआ.

कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है देवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हमरा सता कश्ती तेरी

0: सुपर, यही तो वॉइस है यार, क्या कहें, दिल को छूने वाली। जुबिन नौटियाल रिमाइंड्स अस दैट म्यूजिक डजंट ऑलवेज हैव टू बी लाउड टू बी पावरफुल, है ना। कभी कभी एक सिंपल मेलोडी, एक सही सच्ची आवाज़, ऑनेस्ट वॉइस बस काफ़ी होती है हज़ारों लाखों लोगों को छूने के लिए, वो तार दिल में बसाने के लिए। दैट इज़ जुबिन नौटियाल। पता है ये वाला जो गाना है बिकेम अ मैसिव हिट, जो पहला गाना सोनाली केबल का, एंड देन शौकीन्स केम, एंड दैट ऑल्सो बिकेम सो सो सो वेल एक्सेप्टेड, एंड वो जिन्हें रिजेक्शन मिला था एंड ही हैड टू गो बैक, और उन्हें ये भी कहा गया था वापस चले जाओ। ये जो है ना, बॉलीवुड डेब्यू करने के पहले ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज लोकल परफॉर्मर इन हिज होम टाउन ऑफ देहरादून, और 18 साल के एज से ही he was actively hosting live charity events and donating his performance proceeds to local causes. कहते हैं कभी कभी जब आप बहुत सारा दान करते हो, where you are a true artist, और आप you are very grounded और लोगों की मदद करते हैं, तो बस बहुत सारा blessings आपको मिल ही जाता है। हम खामखा ज़िंदगी में फाइटर मोड में रहते हैं, जब हम चाहते हैं सब कुछ हम ही कंट्रोल कर ले, हम ही करेंगे तो होगा, बिकॉज इट इज़ अस एंड मी हु कैन डू इट। बट समटाइम्स अगर यही जान जाए ना, हर कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, देर इज़ मोर देन वॉट वी कैन सी, एंड वेन वी लेट गो, एंड वेन वी नो कि हम जब लेट गो कर देते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर तरफ से आती है। That's how Jubin has says that he has been blessed with the art, and he has just went on doing his thing without expecting anything in return. Even after so much of rejection, he is celebrated as the very, very beautiful voice. Let's take a short break. Kuch aur gaane iske.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1.

0: FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry per buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price per. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Pritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
10: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
9: Sach? Ya phir court decide karega?
10: Wait, what?
11: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी family के decisions court लेता है.
12: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में. The right way with estate planning.
11: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
13: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ली जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
14: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
10: क्या?
14: सैलरी बंद हो जाती है
10: और बिल्स बंद नहीं होते.
14: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
10: मतलब
14: ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
0: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
0: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
15: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
0: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
15: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
19: Calculating route. Rerouting.
18: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
19: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
18: Kyu?
19: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
18: Achha, तो सीधा वही ले चलो।
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
19: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
20: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
21: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening to Radio Fun Asia.
22: Welcome back, dosto. 104.9 फन एशिया रेडियो सुन रहे मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता। ये जो खास पाँच हाथ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट शो रहता है मेरा एंड सेलिब्रेटिंग दिस अमेजिंग वॉइस जो है जुबिन नौटियाल का खूबसूरत आवाज़ और ऐसी आवाज़ जो हमें डूबने पर मजबूर कर देती है। डूबना इज सच अ नॉट पॉजिटिव वर्ड हाँ नेगेटिव वर्ड कि यार हम डूब गए, लेकिन जब हम डूब जाते हैं उसकी पॉजिटिविटी ये होती है कि हम बिल्कुल खो जाते हैं। 104.9 FM Fun Asia रेडियो जब आप सुन रहे होते हैं तो आवाज़ में जादू हो तो खास लगती है।

That is Zubin, not Yal. जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जुबिन को. और आज नहीं है वैसे, he celebrates his birthday on the 14th of June every year, and here we are celebrating him a little early. 37 years के हो जाएंगे, 38 years के हो जाएंगे on June 14, and that is remarkable कि इतनी young age में कहाँ से कहाँ पहुँच गए. 104.9 FM, Fun Asia Radio पर these beautiful songs, celebrating Jubin Nautiyal on Fun Asia Radio. और पता है आप लोगों को कि ये जब इतने खूबसूरत हम नगीना, हम डायमंड, हम यू नो वी कंपेयर सच ब्यूटिफुल पीपल वॉइसेस टू समथिंग वेरी प्रेशियस, और प्रेशियस है तनिष्क हमारे शहर में. And they are presenting the Festival of Exchange. Exchange your old gold and get $5 extra per gram on exchange gold with diamond purchases. Or 9 carat se upar ke old gold exchange per 0% deduction hai. Turn your old gold into something new, beautiful and timeless. Only at Tanishq, USA. TNC apply. 104.9 FM, Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Aur yahan par ek खास गाने की फरमाइश आई है. जुबिन नौटियाल नहीं है, वी हैव सेलिब्रेटेड जुबिन नौटियाल टुडे. एंड ये जो खूबसूरत गाने आपने सुने उसमें मैं खाली इस गाने के साथ एंड करना चाहती हूँ.

104.9 FM, Fun Asia Radio सुन रहे हैं. मैं आपकी होस्ट नवनीता पानसाद, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट. यहाँ पर ये जो चलता रहता है ना, ये साथ आपका और मेरा, उस साथ में कुछ गर्मी की बातें हो जाती हैं. व्हेन पीपल लाइक फीलिंग हॉट हॉट हॉट. और आ रहा है मेरे पास बहुत सारे कॉल्स saying feeling hot hot hot. And I know जब Dallas में वक्त बदल जाता है, temperatures बदल जाते हैं, तो फिर it is hot hot hot. I hope you all are having you guys are having a lot of watermelon, which is very nice. अभी के fruits are like super duper. मैं इस बार जो berries खा रही हूँ, और all the mangoes which are so sweet, delicious, और जो you know plums है, peaches हैं, oh my god, so juicy. Have you also experienced the same thing? इस बार के जो fruits हैं are more sweet than you have ever had. For some reason I am feeling this. Maybe I am biased because I'm enjoying the fruits so much. If you are feeling the same, that हाँ यार, इस बार के जो fruits आए ना, सच्ची कुछ ना कुछ तो different है, amazing है, and ज़बरदस्त मिठास है, और वेरी जूसी. ओह माय गॉड, आपके मुंह में पानी आ रहा है? कोई बात नहीं, मेरे मुंह में आ रहा है. मैं ये गर्मी में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ. एंड ये वाला गाना जो है, रिक्वेस्टेड है राहुल से, राहुल की तरफ से आप सबके लिए. आई एम सैमी फॉर यू टू.

0: Music is not just sound, it's the heartbeat of every moment. And this is the Friday evening vibe because the weekend is dropped early. ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे ही वीकेंड है. फ्राइडे जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है, शाम को ड्राइव कर रहे होते हैं, तब जो खुशी मिलती है ना, क्योंकि दो बोनस डेज है और आज से वीकेंड शुरू. मेरे लिए तो ऐसा ही है दैट आई ब्रिंग इन द वीकेंड वाइब. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए, रहने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए, आने के लिए और ये शाम इन्जॉय करने के लिए. यस, गर्मी पड़ी है लेकिन अभी भी 77 लोज हैं भाई, और अभी देखिए शाम को 88 है, विच इज़ नॉट बैड कम्पेयर टू द हंड्रेड्स विच वील गेट इन टू इवेंचुअली. बट टुनाइट इट्स पार्टली क्लाउडी विच इज़ अ नाइस थिंग. कल शनिवार की रात्रि विच इज 75 पर दिन में 94 डिग्रीज है. पार्टली क्लाउडी है, पार्टली सनी है, गर्मी रहेगी. होता ऐसा है गाड़ी में आप बंद हो जाए तो ओवन हो जाता है, तो थोड़े शेड में रहे तो इट इज़ नाइस. एंड संडे संडे स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स विच विल ब्रिंग द टेम्परेचर्स अ लिटिल बिट डाउन. 69 लो एंड 84 हाई. स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स है, इधर उधर बारिश होगी. शुरुआत ऑफ द वीक मंडे एएम में शावर्स हैं with 66 low and 81 high. So Monday really looks nice when you get up in the morning. Subah subah, shuruaat of the week will just feel so good with 66 low and 81 high, which is not bad considering we are into summers. 81 super duper. Partly cloudy hai, terrific Tuesday bhi, 70 high, low and 90 high. Thoda high hoga din mein, lekin 70s evenings and mornings are cool. Go for a jog, morning walk, whatever you do. Aur sham hote hote apne doggies ko walk karane definitely le jaiye. Mazhar of the week Wednesday, it is 77 low and 95 high. Jabhi bhi ye 70s mein hai, hum sham aur subah तो कम्प्लीटली महफूज हैं. थम्स अप थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे, पार्टली क्लाउडी विद 77 लो एंड 96 हाई. देखिए ये जो थम्स अप throwback, oh my god, just throw the back.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
1: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
12: लिया.
11: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
15: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
0: वेलकम बैक. वो मौसम का हाल जो थर्सडे तक था, फ्राइडे आके वापस से इसी दिन पे खड़ा हो जाता है. 76 लो एंड 90 हाई. नेक्स्ट फ्राइडे जब मैं आऊँगी, थोड़ा सा स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म लेकर, 43% रेन के साथ, और हवाएं काइंड ऑफ 13 माइल्स पर आवर. और मेरा साथ आपके साथ 8 तक आज की शाम. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए. सुबह शाम दिन रात रोज़ाना हर हफ्ते हम आते हैं हंसते हंसते और चाहते हैं बस आपकी एक मुस्कान. शायद ये गाना दे दे.

That was a beautiful, beautiful song, 104.9 FM, Fun Asia Radio सुन रहे हैं. पता है आपको, ये ऐसा हुआ कि एक ना पड़ोस में झीलू राम ने देखा कि एक माता जी ना बाहर बार बाहर आ रही थी और फिर घर के अंदर चली जा रही थी, फिर बाहर आ रही थी, फिर अंदर चली जा रही थी. तो झीलू राम वहाँ पर गए, बोले माता जी क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है. नहीं नहीं बेटा, मेरी बहू ना वो योगा कर रही है टीवी देख के, और उस योगा में बोल रहे हैं साहस को बाहर करो, जहाज को अंदर करो, साहस को बाहर करो. तो मुझे बार बार बाहर और अंदर, दैट इज सांस. आई एम सो सॉरी. आई नो झीलू राम, आप ही के सामने इर्द गिर्द ऐसा क्यों हो जाता है, हो जाता है, एक बारी ऐसा हो.

Welcome back. पता है दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही टैप्ड इनटू हर स्पोर्टी साइड एज शी डिलीवर्ड एन इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस एट द ओपनिंग सेरेमनी एट द फीफा वर्ल्ड कप 2026. और ये वाला जो है, इट इज बीइंग हेल्ड एट द टोरंटो स्टेडियम, और ये इस फ्राइडे को अहेड ऑफ कैनेडा वर्सेस बोस्निया मैच. She performed this. The ceremony featured a star-studded lineup, और उसमें हमारी नोरा फतेही really did this performance at the World Cup opening ceremony. Following Alicia Cara's opening performance, नोरा फतेही made a dramatic entrance in red ensemble. इतनी खूबसूरत लग रही है. It is red and white. And she got the show off to an electrifying start. मैं वो गाना बजा रही हूँ जो वो प्ले वो जिस पे उन्होंने डांस किया है. This is a live recording, so I will just play that for you. And she performed the official FIFA song Sir Sir alongside Vega Dream and Sanjoy. And the actress and singer showed off her moves and grooves as fans and spectators cheered on. And this video looks amazing. देखकर ही मजा आ रहा है. And such a big thing to be performing in the ceremony at the FIFA World Cup. This is her directly.